जा बुरा कर दे हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा।

भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

वो क्या है ना दोस्तों, कभी कभार जिंदगी हमें सिंपल सी चीजों से काफी सारे लाइफ लेसन दे देती है। जैसे फलों का राजा आम को ही देख लो,

वो क्या है ना दोस्तों, कभी कभार जिंदगी हमें सिंपल सी चीजों से काफी सारे लाइफ लेसन दे देती है। जैसे फलों का राजा आम को ही देख लो,

0: किया है, जब तक आपने वो खट्टे लो क्वालिटी आम टेस्ट ना किए हो, तब तक एक सच में मीठा रसीला आम बस एक फ्रूट ही लगता है। लेकिन जैसे ही वो परफेक्ट स्वीटनेस जुबान को टच करती है ना, तब समझ आता है कि डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। और ये बात सिर्फ आम तक लिमिटेड नहीं है, ये जिंदगी का भी रूल है बाबू मोशाय। जब तक हम थोड़े मुश्किल दिन ना देख ले, तब तक अच्छे दिन का सुकून समझ नहीं आता। जब तक किसी के साइलेंस फील ना हो, तब तक किसी की बातों का वार्म्थ का एहसास नहीं होता। जब तक थोड़ी सी स्ट्रगल ना हो, तब तक सक्सेस का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो जिंदगी भी एक फ्रूट बास्केट की तरह है, हर फ्लेवर जरूरी है, थोड़ा खट्टा थोड़ा कड़वा, तभी तो मीठा यादगार बनता है। तो वेल, आज के दिन की शुरुआत ये परफेक्ट से ख्याल के साथ चलिए करते हैं राइट हियर माइक से दिल तक आपकी आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, विया करवा दो जी।

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी

0: Milchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burka, burka. La virtua la burka. Milchi, burka.
1: Hello.
2: Sir, very good evening. Me बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
1: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
2: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन। अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
3: यस सर।
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
3: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपके
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
3: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
3: राइट सर?
1: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
3: सर
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
3: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: बिल्कुल
3: आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
2: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
2: यस सर।
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
2: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
2: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
1: यार,
2: भी
1: क्या
2: मैं
1: नहीं होता यार?
2: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर और मेरे को गालियां दे रहे हैं।
2: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
1: झूठ बोलेंगे तुम लोग,
2: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: ओह यार तुम लोग ना।
3: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अब से कोल्ड ड्रिंक लेने से पहले आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा। ये नहीं कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होगा, ये कि भाई इस पर टैक्स कितना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज की खबर कुछ ऐसी है,
1: क्या खबर कतर?
0: दैट ये कतर के जनरल टैक्स अथॉरिटी ने एक बड़ा ही स्मार्ट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज के अब एक्साइज टैक्स डायरेक्टली शुगर कंटेंट पर होगा। और ये बात तो आ गई थी कि अब शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसका ब्रेकडाउन कैसा है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे हाई शुगर अगर कोई ड्रिंक है 8 ग्राम या उससे ज्यादा पर 100 ml पर, तो उस पर लगेगा 1.06 कतरी रियाल पर लीटर टैक्स। अगर मीडियम कंटेंट है शुगर का उसमें, तो 5 से लेकर 8 ग्राम तक तो 0.77 कतरी रियाल पर लीटर। और उससे कम है यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, 5 ग्राम से कम शुगर है, तो फिर जीरो टैक्स। मतलब अब लेवल पढ़ना सिर्फ जिम वाले लोगों के काम नहीं है, स्मार्ट कंज्यूमर्स का भी हो गया है। अब यहाँ एक छोटी सी बट पावरफुल बात यह है कि कैलकुलेशन जो ये देख रहे हैं आप, ये पर 100 ml पर किया गया है। मतलब आप तो 330 ml का लोगे, 500 ml का लोगे, तो उसमें हर 100 ml के हिसाब से और शुगर कंटेंट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। वैसे ये सिर्फ कतर का आइडिया नहीं है, यूके ने भी ऐसा शुगर बेस्ड टैक्स लगाया था, उसके बाद यूएई, सऊदी, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर ऐसा चलते आया है। तो बस अगली बार ये देखिए, ये पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये एक बिहेवियरल नज है कि आपको सटली पुश किया जा रहा है कि भाई चूज हेल्दी ऑप्शंस ना। तो बस अगली बार जब आप शॉपिंग करोगे ना, तो शुगर कंटेंट जरूर देख लेना के और सोच लेना कि भाई देखिए इस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो सोच समझ के अब शुगरी ड्रिंक्स पीजिए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ चानती कुड़ी, ओ चानती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: Ochane ti kuri.
1: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भट्ट
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
2: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक. और मौसम का क्या हाल है, चलिए जरा देखते हैं. वेल, मौसम दोहा का आज ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर रहने वाला है. मिनिमम मीन वाइल इज एट 29 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअल फील्स 30 डिग्री सेल्सियस की है. इनफैक्ट कल शाम को जब मैं बाहर निकली थी, आई फेल्ट एक्चुअली कि दोहा इज स्टिल वेदरिंग, आई वुड से, बिकॉज बड़ी ही ब्रीजी ब्रीजी सा प्लेजेंट सा वेदर शाम के वक्त लग रहा था. तो भाई अब तक के आपके वॉक्स के लिए, यानी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स का बहाना आपको मिला नहीं है, तो वो तो बरकरार रखिएगा और सुनते रहेगा मिर्ची 89.6 FM पर आफरीन के साथ. इट्स हॉट.
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future, call now 3100813. Mirchi, fresh maal.
2: Dreamy vibe aur romantic feel ke saath suno, Chand Mera Dil.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
2: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: घड़ी का इशारा सुबह के 7 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स इट्स हॉट
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

अच्छा मुझे अब भी याद है जब पहली बार हमारे कतर में एसी वाला रोड आया था, आई एम राइट इन कतर, क्या एक्साइट हो गए थे हम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अब तो हमारे कतर में जैसे हर रोज की बात है, मतलब किसी को अगर कहना होता है ना जो कतर का नहीं है कि यार हमारे कतर में आके देखो यार, हमारे यहाँ तो एसी की सड़कें होती हैं। सो वेल ऑन दिस नोट मैं बता दूं आपको अब कहाँ कहाँ पर आपको एसी की सड़कें नजर आएगी कतर में। वेल पहले ऑन माई लिस्ट इज ऑफकोर्स कतारा, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद आई हैव ऑन माई लिस्ट, इनफैक्ट डू यू नो ओल्ड दोहा पोर्ट पर भी शुरू हो चुका है, वो जो वुडन क्या तरफ है ना जहाँ पर पेस्टल कलर की बिल्डिंग्स है वहाँ पर, जी हाँ वहाँ पर भी अब एसी का वो पाथ है। मतलब इस गर्मी में ये बहुत ज़रूरी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सूख वाकिफ में भी अगर आप जाओगे तो एसी के रोड्स नज़र आएंगे एक तरफ में, मतलब ये कितना ज़बरदस्त हो जाता है ना। मतलब हमारे जो प्लान्स है समर्स में रुकने नहीं चाहिए, ये सारी जो आइकॉनिक जगह है कतर में वहाँ पर एसी के रास्ते हैं। सो नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट लुसेल बुलेवार्ड पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी एसी का रास्ता है। देन मदीना सेंट्रल में है, ऐसे कतर में कई सारी जगहों पर है। बट अगली बार जब भी आप समर्स में कहीं आउटडोर जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो ऐसे इनमें से कोई एक जगह आप सिलेक्ट करिए ताकि आपका जो एक वॉक है, आपकी जो आउटिंग है, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हैम्पर ना होते हुए आप इंजॉय करें। फिलहाल ये वीकेंड भी जा सकते हो आप। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सारी जगहों पर है बट अगली बार जब भी आप समर्स में कहीं आउटडोर जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो ऐसे इनमें से कोई एक जगह आप सिलेक्ट करिए ताकि आपका जो एक वॉक है, आपकी जो आउटिंग है, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हैम्पर ना होते हुए आप इंजॉय करें। फिलहाल ये वीकेंड भी जा सकते हो आप। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La vidva la murga. Milci, murga. Murga.
1: हेलो मनोज जी।
2: हाँ जी
1: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी दी थी ना सर्विस के लिए
2: जीती
1: है। हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
2: 40,000 रुपए?
1: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
2: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
1: नहीं, तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखे है ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
2: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
1: नहीं सर,
2: शॉप में दी कबाड़ी वाला, समझ नहीं आ रही।
1: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
2: जी,
1: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
2: अच्छा,
1: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने।

0: मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के, तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसका 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
0: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 40,000
1: रखा तू नहीं चाची, ये बकवास करे जा रहा है।
0: सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? पटरी ठेका ले रखा
0: है
1: ट्रेन की पटरी।
0: मैं
1: बात वाची बात नहीं है मेरी, सुन तो कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर, आज छोटी जाएंगे पाई लेने, रोटी का काम क्या है?
0: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा नहीं,
1: नहीं। मैं सर,
0: सर, सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड
1: सर, सर, सर, सर, सर, सर
0: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बन गया है आपका। मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
5: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: देखिए 100% ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने फोन हाथ में लिया, अनलॉक किया, फिर 15-20 मिनट वहीं कुछ स्क्रॉल करने के बाद ये सोचा कि यार मैंने फोन क्यों उठाया था। डोंट वरी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ, आपके साथ, हम सभी के साथ ऐसा होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और स्टडीज ये कहता है एवरेज पर्सन अपना फोन लगभग 90 से 100 बार दिन में चेक करता है। यस, एंड इंटरेस्टिंग बात ये है, बिहेवियरल रिसर्च ये भी बोलती है कि इनमें से काफी चेक्स कभी कभी सिर्फ हैबिट बेस्ड होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन होता नहीं है, बस हम अपना फोन उठा लेते हैं एंड देन वी डोंट नो व्हाई आर वी चेकिंग दिस फोन। वैसे इसको एक्सपर्ट्स बोलते हैं फैंटम चेकिंग। यस, इसका जो वर्ड है, टर्म है, फैंटम चेकिंग होता है, मतलब नोटिफिकेशन आई भी नहीं है पर हम फिर भी चेक कर लेते हैं। फन फैक्ट ये है कि एक स्टडी के मुताबिक लोग अपने फोन पर मिनिमम 3-4 घंटा डेली स्पेंड करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछते हैं ना कि अच्छा आपका डेली फोन यूसेज कितना है, तो लोग कहते हैं हाँ 1-2 घंटा ही होगा, एंड प्रोबेबली 3-4 घंटा भी कम है। आजकल के जो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स और रील्स का जो एक अलग से हमें नशा चढ़ा है, इट कुड बी प्रोबेबली मोर देन दैट। वेल, ये फोन भी ना कोई मैजिशियन से कम नहीं है, मतलब यहाँ पर ये टाइम भी गायब करता है और हमारा नियत इंटेंशन भी गायब करता है। वैसे हुआ है ना आपके साथ, फोन उठाया, कभी व्हाट्सएप ओपन किया, फिर इंस्टाग्राम चेक किया, फिर फेसबुक चेक किया, फिर फोन के सेटिंग्स में भी आते हैं एंड देन वी रियलाइज कि भाई मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक टाइम देखने आया तो और मेरा टाइम बस 1-2 घंटा यहाँ पर ऐसे उड़ गया है। सो वेल, नेक्स्ट टाइम जब आप फोन हाथ में लो तो फिर ये हमें सिर्फ थम योगा नहीं करना है स्क्रॉल करते करते, थम योगा से आगे बढ़कर फुल बॉडी वर्कआउट पर भी जाना है और थोड़ा सा इंटेंशन बेस्ड ही स्क्रॉलिंग करें। अब ये चीज जो है, ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली खुद को भी कहने की कोशिश कर रही हूँ ऑनेस्टली। वैसे टेल मी 5000196 पर आकर के यार दिन में आप कितना घंटा फोन पर स्पेंड करते हो, आई वॉन्ट अ टोटल थिंग, मतलब इंस्टाग्राम ये वो कॉलिंग सब मिलाकर आफरीन 2-3 घंटा जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट नो दिन में कितना घंटा आप फोन पर चेक करते हो। ठीक है, 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है, माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: देखिए ऐसी सिचुएशन हुई है कभी दैट आप घर से निकले हो और आप ना वॉलेट में भूल गए हो और साथ साथ मोबाइल में भूल गए हो। होता है ना कभी कि कभी कार में भूल जाते हैं या घर पर भूल जाते हैं। और ऐसे में कोई आपसे QID पूछ ले तब क्या करोगे आप? वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और ऐसे ही सिचुएशन में फैमिली काम आती है। वो तो कहते ही है हर सिचुएशन में फैमिली ही आपकी एट द एंड ऑफ द डे काम आती है, लेकिन ये तो बात अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी यही कहना है क्योंकि ये एक मेट्रैश में अपडेट लेकर आए हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द फैमिलीज आउट देयर। देखिए अब अगर आपके वाइफ या बच्चों के नाम पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, फिर भी आप उनको मेट्रैश यूज करने का ऑथराइजेशन दे सकते हो। मतलब आपका मेट्रैश कैन बी एक्सेस्ड ऑन योर वाइफ्स फोन एज वेल। वेल मेट्रैश ऐप में अगर आप जाएंगे तो डेलीगेशन ऑप्शन आता है, वो चूज करने के बाद रिलेटिव रजिस्ट्रेशन आता है, वहां अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स डाल दीजिए जिस फोन पर मेट्रैश एक्टिव करना है बस, and you just have to click on add, तुरंत authorization complete हो जाएगा। So well, even if your family members need to access their QID and their important stuff, documents or anything, मेट्रैश पे जो आपके फोन पर है they can access that as well. Well honestly, ये कतर की डिजिटल जर्नी का एक और स्मार्ट स्टेप है towards paperless and stressless life की तरफ। तो आज ही चेक करो, मेट्रैश ओपन कर दीजिए, वहां पर डेलीगेशन पर जाइए और अपनी फैमिली को डिजिटली एम्पावर करो। मैं हूं आफरीन आपके साथ, यू स्टे ट्यून विद मी। ऐसे ही कतर के जबरदस्त अपडेट्स के लिए मिर्ची मॉर्निंग सुनते रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

कभी कभी क्या लगता है ना कि दुनिया में हमारी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स कम है, छोटे डेली टास्क वाले ना ये ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम। मतलब दुनिया फ्यूचर की तरफ भाग रही है, एआई आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी रोज के रोज वही काम हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब हमारे जो डेली टास्क है ना वो तो रोज होते हैं वो, और ऐसे कुछ होते हैं ना कि यार बिल्कुल पसंद नहीं आते, ऐसे कुछ काम होते हैं। मेरा आज का सवाल आपसे यही है, अगर एक डेली टास्क आपकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो सकता है तो वो क्या होता? मतलब बताइए, कपड़े फोल्ड करना, बर्तन धोना, आपका बेड बनाना, ईमेल्स का रिप्लाई करना या फिर कुकिंग करना, कुछ तो होगा। बताइए मुझे, आपको वो आपका हर रोज जो एक टास्क है वो करना ही है आपने, लेकिन आपको बहुत ही बोरियत आती है इसमें। वैसे फॉर मी एक नहीं है, दो है। एक तो है कपड़े फोल्ड करना, ये सही में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और जब भी अगर करना भी होता है तो मैं किसी को कॉल लगा लेती हूँ ताकि मेरा टाइम वहां पर गुजर जाए और मुझे पता नहीं चले मैं फोल्ड कर रही हूँ। और एक चीज ये है कि चाय बनाना, हाँ जी मुझे चाय बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आप मुझे बिरयानी बनाने कह दीजिए, मैं फटाफट से खुशी खुशी आपके लिए बिरयानी बना दूं, लेकिन चाय ना ना ना ना ना, ना क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ इट्स योर चांस, 5000196 व्हाट्सएप करके बताओ वो ऐसी कौन सी डेली टास्क की चीज है जो आप चाहते हो वैनिश हो जाए। चलिए इंतजार कर रही हूँ माइक से दिल तक आपकी आफरीन और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तू आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
2: साले को खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले को।

0: वेल, ऐसा भी हो सकता है जिस दिन कोई मूवी की एल्बम लॉन्च होने वाली है उसी दिन सुबह 4 बजे एक नया गाना बनाकर रिलीज किया गया हो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड हु इज नॉट टॉकिंग अबाउट धुरंधर की एल्बम, है ना। धुरंधर पार्ट 1 के गाने हो या धुरंधर पार्ट 2 के गाने हो, शाशा सचदेव हैड जस्ट डन मैजिक। लेकिन ये मैजिक कभी कभार ना ऐसे चुटकी बजाकर भी हो जाता है, क्वाइट लिटरली। एंड ये कहानी हमें जैस्मिन सनलस खुद हमें बताएगी अबाउट दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। और कहानी क्या है, चलिए उन्हीं से सुनते हैं।
1: It was created the day of the music album launch. I was at the studio at 4 a.m. with Shashwat. We were recording and writing the song the day that the music album launched. The day that we performed the songs was the day that it was recorded. Kuch kuch parts humne 3 mahine pehle likh liye the, record kar liye the. It was finalized the day of. Matlab ekdam se puri album bani hui hai, bahut ek se ek acha gana hai. और एकदम से एक गाना आता है जी, जो कि आपको लगता है कि इट्स नाइस, इट्स ब्यूटिफुल, इट इज वेरी ट्रू टू द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड बिट्रेयल एंड लॉस। माई सेल्फ अलॉन्ग विद द होल टीम, वी कुड नॉट हैव इमेजिन व्हाट दैट सॉन्ग हैज डन। एंड अभी लिटरली ऑल इंडियंस वर्ल्ड वाइड आर लिटरली टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग।
0: एब्सोल्युटली, व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इट हैज विद ग्रेट मीनिंग एंड ग्रेट फीलिंग्स। और जैस्मिन सनलस को अब जाकर जो फेम मिल रहा है, जो उन्हें रिकग्निशन मिल रही है, वेल डिजर्व्ड ऑफ कोर्स। लेकिन इनका गानों का सिलसिला इज नॉट फ्रॉम धुरंधर, इट गोज रियली बैक डेटेड। तो चलिए जैस्मिन सनलस की आवाज में अगला गाना सुनते हैं, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको स्टिंग को आगे करो।
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पैरों है, स्टिंग है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे बेकार आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
1: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
1: ठीक है,
3: इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड,
2: आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
1: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
1: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
1: नहीं, उसी
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
2: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को बताता
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
1: तो मैं आपको देखना चाह रहा था, ऐसे कैसे
4: खिलाएंगे। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
6: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100-0813।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
4: जबरदस्त ट्रैक्स,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम के मनी टॉक्स की बातें की जाए. वेल, आईपी के एक्सचेंज रेट अगर देखा जाए तो आज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 25.88, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 77.20, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.66 और श्रीलंकन रुपीज इज एट 88.34. नेपाली रुपीज की बात करें तो 41.42 पर चल रहा है. ऑल इन ऑल घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां. खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 FM पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए दोस्तों, कतर में एक ऐसी ऐप है जो आपके फोन में हो तो आपका आधा टेंशन बिल्कुल खत्म। और नाम है इसका ऑन ऐप, यानी OUN। आई होप आई एम प्रोनंसिएटिंग इट राइट। सो वेल, वेरी गुड मॉर्निंग दोहा, मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और बात करते हैं ये ऑन ऐप के बारे में, OUN। ठीक है, मैं प्रोनंसिएट सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ ये आप बेहतर जानते हो, लेकिन ना ये ऐप के बारे में मैं बता दूँ आपको कि ये क्या है। कभी पेस्ट कंट्रोल चाहिए, कभी ड्रेनेज इशू है, कभी लीज रिलेटेड काम है, कभी बलद या सर्विस का सीन है और आप सोचते हो कहाँ जाए, सो बस फोन उठाओ और डाउनलोड कीजिए ये ऑन ऐप। वैसे बता दूं ये कतर के मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी का ऑफिशियल ऐप है जो पब्लिक सर्विसेज को बना देता है स्लीक, स्विफ्ट और स्ट्रेस फ्री। देखिए मतलब अगर आपको छोटी बात के लिए ऑफिस राउंड्स नहीं लगाने हैं, घर बैठे रिक्वेस्ट डालने हैं, पेस्ट कंट्रोल चाहिए बस हो जाएगा, सीवेज व्हीकल चाहिए हो जाएगा, ड्रेनेज अनक्लॉक करवाना है वो भी हो जाएगा, तो बस और क्या चाहिए भाई। अच्छा, फैमिली वालों आपके लिए एक बोनस फीचर है यहाँ पर, आपको अगर पांडा हाउस पार्क जाना है या अलखोर पार्क जाना है या बरजान पार्क जाना है और आपको टिकट्स बुक करने हैं तो आप प्री बुक भी कर सकते हो इस ऐप पर। क्यों में खड़े रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सीधा एंट्री ले सकते हैं। वेल, इस ऐप में मिनिस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज भी मिलती है, ब्रांचेस की डिटेल्स भी, और आपके रिक्वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड भी होता है। मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, एब्सोल्यूट कन्वीनियंस, एंड इट्स सो एफिशिएंट, प्योर गवर्नेंस विद एलिगेंस आई वुड से। सो वेल, कतर में रह रहे हो और ऑन ऐप अभी तक आपके फोन में नहीं है तो यू गॉट टू गेट स्मार्टर लाइक योर स्मार्टफोन, है ना। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: ऐसा कभी हुआ है कि आपका फोन रिंग किया हो और स्क्रीन पर नाम आया है आपके बेस्ट फ्रेंड का, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है, वैसे ही जैसे खुशी मिलती है चाय के वो पहले घूंट की या फिर आपकी फेवरेट बिरयानी की खुशबू से। अब आप सोच रहे हो आफरीन अच्छी ये कोई कॉम्बिनेशन है, कंपैरिजन है, खाना और दोस्त क्या कह रही हो। वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और ये मैं नहीं, ये साइंस कहता है कि जिस तरह से सुकून आपको आपका कंफर्ट फूड या फेवरेट फूड खाकर मिलता है ना, उसी लेवल का वही सेम वाले जो हॉर्मोन्स जो है आपके रिलीज होते हैं जब आप आपके बेस्ट फ्रेंड की शक्ल देखते हो या उनकी आवाज़ सुनते हो, मतलब वो फीलिंग एग्जैक्टली सेम टू सेम है। अब सोचिए कि जब आप कहीं बाहर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में आपका फेवरेट खाना खाने जाए तो कितनी खुशी आपकी दुगनी तिगुनी हो जाएगी, है ना। वैसे ये जब मैंने बात कही है आई एम श्योर आपको आपके कोई तो बेस्ट फ्रेंड की याद आई होगी और इनफैक्ट आपके कोई फेवरेट कंफर्ट फूड की भी याद आई होगी। अब आप मुझे शेयर कीजिए ना 5000 1896 कि यार वो कौन सा अच्छा फ्रेंड नहीं तो एक वो फेवरेट फूड कंफर्ट फूड की बात कर ले या फिर वो कॉम्बिनेशन के भाई जब मैं ये खाने के बारे में सोचता हूँ ना, अब जब तुम कह रही हो आफरीन तो मुझे ये मेरा ये वाला दोस्त याद आता है। ऑन दिस नोट मुझे ना मेरी स्कूल की फ्रेंड अदिति जो बहुत दूर है, मीलों दूर यूएस में बैठी है, मुझे उसकी याद आई है जब ये ख्याल आया। और खाना कौन सा पता है, आप मजाक समझोगे लेकिन मुझे ना भुर्जी बहुत पसंद है। हाँ वही माय कंफर्ट फूड इज दैट। सो ये अदिति और भुर्जी सेम खुशी देती है मुझे। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आप श्रीन को माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
0: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
2: खोपड़ी तोड़ रही।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
4: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर

0: हम जब भी फ्लाइट पकड़ते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? पासपोर्ट या टिकट चेक करते हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए, क्या आपने कभी अपनी फ्लाइट का कार्बन फुटप्रिंट चेक किया है? वेरी गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। और हमारे खतर से एक प्राउड वाली खबर आ रही है दोस्तों।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट कतर एयरवेज को वर्ल्ड का मोस्ट एमिशन एफिशिएंट लार्ज कैरियर माना गया है 2025 के एमराल्ड स्काई रिव्यू में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जितना लंबा सफर उतनी कम पॉल्यूशन पर पैसेंजर, क्लीन फ्लाइंग क्वाइट लिटरली। वेल यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दैट एविएशन वर्ल्ड में एक मेट्रिक होता है ASK, अवेलेबल सीट किलोमीटर्स। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है पर इसका फंडा काफी सिंपल है, कितनी सीट्स कितनी दूर तक फ्लाई कर रही है और उसके हिसाब से एफिशिएंसी मेजर होती है। और इस रेस में कतर एयरवेज ने रयान एयर और टर्किश एयरलाइन जैसे बड़े नाम को भी पीछे छोड़ दिया है। वेल ऑन दैट नोट, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि लॉन्ग फ्लाइट ज्यादा पॉल्यूशन करती होंगी, बट रियालिटी नॉट ऑलवेज। कतर एयरवेज जैसे एयरलाइंस अपनी फ्लीट को सुपर मॉडर्न रखती है। एयरबस A350, बोइंग 787 जो फ्यूल को लिटरली सिप करते हैं, गल्प नहीं। रिजल्ट अराउंड 60 ग्राम्स कार्बन एमिशन पर पैसेंजर किलोमीटर, व्हिच इज एक्चुअली अमंग द लोएस्ट ग्लोबली। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स ग्लोबली द लोएस्ट। दैट्स व्हाट आई कॉल स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट जस्ट बिग क्लेम्स। और सिर्फ प्लेन्स ही नहीं, रूट ऑप्टिमाइजेशन, वेट रिडक्शन, 80+ फ्यूल सेविंग इनिशिएटिव्स, मतलब ये एक फुल ऑन प्रिसिशन गेम है बिहाइंड द सीन। सो नेक्स्ट टाइम जब आप विंडो सीट से क्लाउड्स देख रहे होंगे ना फ्लाइट में, सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ स्मार्टर ग्रीनर जर्नी। माइक से दिल तक आफरीन के साथ आप जुड़े हैं राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो
1: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रही हूँ। हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
0: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
1: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
2: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ। अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन?
3: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
0: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
3: यस सर,
0: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
3: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
0: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
3: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
0: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
3: राइट सर?
0: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
3: सर
0: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
3: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
0: मैं
3: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
1: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
0: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
1: यस सर।
0: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
1: सर कौन?
0: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
1: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
0: यार,
1: भी
0: क्या
1: मैं
0: नहीं होता यार।
1: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
0: फोन आ रहे हैं बराबर और मेरे को गालियां दे रहे हैं।
1: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
0: झूठ बोल रहे हो तुम लोग,
1: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
0: ओह यार तुम लोग ना।
3: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्तों तो आज थोड़ी हेल्थ शेल्थ की बात की जाए। जनरली जब सर्दी खांसी हमें होती है तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल है, वायरल है एंड काफी इजी ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी वही नॉर्मल चीज डेंजरस टर्न ले लेती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफ्टरीन का साथ है आपके साथ और आज बात हो रही है RSV की, यानी रेस्पिरेटरी सिंकिटल वायरस। नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इशू काफी रियल है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हाई रिस्क ग्रुप्स को स्पेशली RSV वैक्सीन लेने की एडवाइस दी है। देखिए, RSV कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट हर बच्चा ना 2 साल की एज तक एक बार RSV कैच कर ही लेता है। बट द प्लॉट ट्विस्ट इज इन्फेंट्स, एल्डरली लोग, प्रेग्नेंट वुमेन और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये वायरस सिंपल कोल्ड से डायरेक्टली निमोनिया या ब्रोंकाइटिस तक का पहुंचा सकता है। ठीक है, दैट्स अलार्मिंग, बट उसके लिए क्या है, उसके लिए वैक्सीन है यहाँ पर। तो MOPH ने अकॉर्डिंगली वैक्सीन स्पेशली रेकमेंड की है प्रेगनेंट वुमेन के लिए, स्पेशली जो 28 से 36 वीक्स के बीच में है, 60+ अडल्ट के लिए, क्रॉनिक इलनेस वालों के लिए, वीक इम्यूनिटी वालों के लिए। और प्रेगनेंट वुमेन के लिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबॉडीज बेबी तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, इवन बिफोर बर्थ। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो वैक्सीन है HMC, PHCC सेंटर्स हर जगह मिल रहे हैं। सो इट्स बेटर ना, बेटर सेफ देन सॉरी, राइट? मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मदर टंग। जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
1: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
0: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
0: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: Refop is Crick 2026 is officially a wrap. Huge thanks to our 12 teams and the RCCI Hubbully chapter. Thanks to our partners, SST Group, TNT Media, and AK Steel for fueling the drive. Refa, BizCrick, where business wins!
7: Hello, shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
8: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: कैसे कोई सभी को खुश कर सकता है, कोई आइसक्रीम या बिरयानी थोड़ी ना है हम। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त हो चला है कि आफरीन अपने डायरी से कुछ चंद लाइंस जो होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अर्ज करे।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि तेरे इश्क में लिखे हैं मैंने अल्फाज ऐसे ऐसे, तेरे इश्क में लिखे हैं मैंने अल्फाज ऐसे ऐसे, कुछ लोग हम पर फिदा हो गए, कुछ हमसे खफा हो गए। और होता है ना ऐसे जिंदगी में कि भाई सभी को खुश नहीं रख सकते हैं हम फिलहाल के लिए, भाई अपने सुकून और अपने इश्क की तरफ बस वहीं पर तवज्जो रखते हुए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। राइट एंड मिर्ची आपकी सिंपली आफरीन के साथ, माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
5: खट खट, हु दैट?
1: Only on 89.6 Mirchi 1.
6: Mirchi,
1: it's hot.
6: It's hot.

0: जो होता है अच्छे के लिए होता है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को 89.6 मिर्ची 1। और मेरे तो जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते एक सिंपल सा ख्याल आया था, सोचा था चलो शेयर करके चली जाती हूँ। अक्सर ना हमारी जिंदगी में कभी कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत दिलोजान से चाहिए होती है, या थिंग्स शुड वर्क इन अ सर्टन वे एंड इट डजंट वर्क आउट, तो हमारे ना बड़े बुजुर्ग क्या कहते पता है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये हमने न जाने कितनी बार सुना है, शायद कितनी बार दूसरों के लिए कहा भी है, पर हम जब कहते हैं ना ऐसे ही फ्लो में शायद निकल जाता है। बट अगर सोचने की बात ये है कि जिंदगी में ना जो हमें मिल रहा है शायद वही जरूरी है, और जो छूट रहा है शायद उसकी जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। एंड हमारे जितने भी प्लान्स हो हमारे लिए, हमसे बेहतर प्लान्स हमारे लिए ऊपर वाला बनाता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल अनजान होते हैं। सो अगली बार से शायद ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में भी हो जाए ना, तो व्हेन यू थिंक नहीं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द राइट वे, तब मेरी भी ये छोटी सी बात याद रख लीजिए यार, कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सिर्फ तुम्हारी ही भलाई है इसमें। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, लेना चाहूंगी अलविदा, मिलूंगी आपको जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है
0: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन सच कहूँ ये काम अगर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी ने किया है, सबसे खूबसूरत तरह से किसी ने किया है, तो वो है हमारी माँ। यू नो, वो मिठास साथ में कभी वो फटकार, वो डांट, लेकिन ढेर सारा दुलार और ढेर सारा प्यार। एंड आज का दिन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ही खास है यार, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। तो सबसे पहले जितनी भी माएँ इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। एंड अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी माँ तक ये संदेश जो है ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपकी वाइफ एक माँ है तो उसके लिए आज का जो दिन है ना, बहुत स्पेशल बनाएँ। एंड चाहे आप कितने भी बिजी, कितने भी मसरूफ़, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो यार, प्लीज़ आज अपनी मम्मा को कॉल करना जो है ना, बिल्कुल भी ना भूलें। यार अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ ना, तो वो आज शायद मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी ने जो कहा है वो बहुत सही और बहुत ही खूब कहा है कि माँ जो है ना, चाहे दुनिया में हो, जन्नत में हो, कहीं भी हो, लेकिन माँ जो है जाकर भी हर वक्त आपके पास होती है। एंड अगर अपनी मम्मी की यादों की मैं बात करने की कोशिश करूँ, तो यार मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा पहलू कहूँ, ये जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त अगर मैंने किसी के साथ गुजारा है ना, तो वो है अपनी माँ के साथ। एंड इनफैक्ट आज भी, वो चाहे दुनिया में क्यों ना हो, लेकिन दिन का एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वो मेरे ख्याल में नहीं होती। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मेरी उनसे बात नहीं होती। दिल से होती है यार, मन से होती है। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब सुबह स्कूल जाने पर, लेट उठने पर मम्मी का फंडा एक ही होता था कि रूम में आगे बस पूरा कमरे का पंखा बंद कर देती थी, मम्मा सोने दो ना, उठो स्कूल जाना है। एंड कितना भी पेट क्यों ना भर जाए, लेकिन नहीं, वो दो निवाला एक्स्ट्रा ज़रूर खिलाना है। कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन आधे घंटे वो एक रिवीजन ज़रूर कराना है। खुद कितना भी क्यों ना डांट लें, कितनी भी धमकी क्यों ना दे दें कि अगर तुमने ये नहीं किया ना, मैं पापा को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जब पापा वो ज़ोर से डांटने की कोशिश करें ना, तो सबसे ज़्यादा कलेजा अगर किसी का फटा करता था तो वो था मम्मी का। खुद कैसा भी कुछ क्यों ना करे, लेकिन कोई और उनके बच्चे को एक

0: बिना कहे बिना कुछ बोले कि आपके दिल पे क्या है, और वो माई तो है जो हर जख्म में मरहम लगाना बहुत अच्छी तरह से जानती है, और आपकी खुशी को आपसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो बस अगर इस वक्त आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मदर्स डे को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। क्या आप मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं? 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीन वाहल शंकर महादेवन की एक खूबसूरत सी आवाज़ एंड ये गाना माँ के नाम, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: मैं

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों हील? नहीं तो आपको पूछना क्या है, बताइए।
3: मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं?
2: ज्यादातर नहीं।
3: ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम लड़का भगा के करना चाहते
2: हैं। मेरी बात सुनिए
3: दोबारा, एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
2: हेलो
3: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
2: नहीं
3: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के नहीं बकवास। अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए रेखा।
4: रेखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
4: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
4: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पकड़।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लार्को की एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनो, बड़ा लवली ट्रैक इट इज यार। उस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब ये काम की बात सुना दीजिए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन भाई, कोई तो खास बात है जो इस वक्त आपके बीच मैं पेश कर ही दूँ। Well, इस वक्त सेलिब्रेशंस की बात करें तो आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज एक ऐसी सर्विस जिसने हमारी जिंदगी में कम्यूट को बहुत ही ज़्यादा आसान एंड फीजिबल किया एंड साथ में बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज दी, वो आज एक बहुत ही स्पेशल नंबर पूरा करने जा रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 7 years, लेकिन किसकी? Well, I'm talking about Doha Metro and it marks 7 years of service and 292 million passengers by Doha Metro. क्या बात है यार? Well, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी बात यह है कि अगर मेट्रो को हम देखने की कोशिश करें तो ना ही सिर्फ इसने हमें बहुत सारी अच्छी यादें दी, लेकिन सबसे खूबसूरत बात अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो इट वॉज ड्यूरिंग फीफा। मतलब मेट्रो जो है अपने आप में एक रेवोल्यूशन बन गया था। कहीं आपको भीड़ नजर आए ना आए, कहीं आपको वो वाइब फील हो ना हो, लेकिन मेट्रो एक ऐसी जगह होती थी भाई जहाँ हर एक नेशनैलिटी ने दिल खोल कर अपनी जिंदगी को जिया है। चलिए इस वक्त एक काम करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कतार के वक्त दोहा मेट्रो की एक टैगलाइन है जो किसी ना किसी सिक्योरिटी ने दी थी, जो बहुत हिट, बहुत पॉपुलर हुई थी। अगर आपको वो टैगलाइन याद है या वो गाना याद है तो बस अपनी आवाज में फटाफट से रिकॉर्ड कर मुझे करेक्ट आंसर भेज ही दें। व्हाट कुड बी अ बेटर वे टू सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन देन विद यू ऑल वंडरफुल पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग मोमेंटम। 5000 1896 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम @mirchi1kataria @mirchianshu। मीनवाइल गुरु रंधावा की आवाज हीर का साथ एंड ये अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
0: ओके टेक केयर डियर,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। मैजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, Vishal Mishra ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Yodha. And bhai, lekin Yodha bankar hamari zindagi mein solid entry mari, to bas inhone hi. Mirchi Anshu. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. And is waqt agar hum kisi ki baat karein to ek aise transport system ki jo basically sahi maine mein sirf ek transport system nahi balki Qatar ki heartbeat ban chuka hai. And I'm talking about Doha Metro. Well, agar is waqt dekhne ki koshish karein to proudly inhone apne 7 saal complete kar chuke hain jaise ki ab se kuch der pehle maine aapko ye bataya. And aaj ke date mein network almost 292 million passenger journeys complete कर चुका है. Imagine the number of stories, destinations and memories that are attached to it. या देखिए, सबसे पहले अगर दोहा मेट्रो की मेजर लाइंस की मैं बात करूं, सो इट हैज गॉट 3 मेजर लाइंस, रेड, ग्रीन एंड गोल्ड, विद 37 मॉडर्न स्टेशंस व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस नियरली 76 किलोमीटर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी. एंड बात इतनी कि यहां पे सब स्टेशंस नहीं है, 73 मेट्रो लिंक रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 7070 एंड 10 मेट्रो एक्सप्रेस सर्विसेज जिन्होंने कम्यूट को और भी ज्यादा सीमलेस बनाया है. लेकिन अब से कुछ देर पहले अगर मैंने आपसे कोई बात पूछी तो बस फीफा की कुछ यादों को फिर से ताजा करने की कोशिश कि भाई वो टैगलाइन क्या थी जो हम सबके मुंह पर, जुबान पर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से भी ज्यादा बस चुकी थी. बहुत सारे रिप्लाईज आए, फिर से मैं बासु प्रधान की बात करूं, यूसुफ की बात करूं, नासिर खान की बात करूं या मैं बात करूं प्रवीण की, साजिद की, वह सबका एक ही कहना है कि वी आर मेट्रो दिस वे मेट्रो एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दैट. उफ, क्या गजब क्या एक्सपीरियंस यार. लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि अगर मेट्रो की, दोहा मेट्रो की पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी की बात करें तो सिस्टम जो है 99.83% ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर चलता है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका पहुंच चुका है एट एन आउटस्टैंडिंग 99.9%. क्या कमाल का काम कर रहे हैं. नहीं, बस हमारे ऑफिस वाले बात ना सुने, बॉस बोलेंगे जरा सीखो उनसे जाकर कुछ, नहीं मौका ढूंढते ना. Having said that, भाई हम तो बचपन से ही अगर मेट्रो की बात करें या ट्रेन की यात्रा की बात करें तो लटक के चढ़ने के आदि हैं, लटक के ट्रैवल करने के आदि हैं. लेकिन दोहा मेट्रो ने हमें ये सिखाया भैया सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठ के भी ट्रैवल जो है वो किया जा सकता है. क्या बचपन के दिनों में, स्कूल कॉलेज टाइम्स में, जब आप इंडिया में ट्रेन का सफर किया करते थे, कभी लटक के या वो खड़े होकर भीड़ में, झुंड में, घुस घुस कर कभी ट्रैवल किया है? 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर योर एक्सपीरियंसेस, डू शेयर दैट विद मी. बंदी का नाम अंशु, बॉम्बे वाइकिंग्स की आवाज़ एंड ये अगला गाना आपके लिए. एंजॉय.

0: Mirchi, fresh maal.
1: Dreamy vibe और romantic feel के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं। देयर आर 3 पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल। दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे।
2: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
1: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाने ही पड़ेगा।
2: मुझे बचाने नहीं है, आई ब्रेक द रूल। मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ।
1: ऐसा ही हूँ मैं।
2: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं।
1: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हू दैट?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आवर जान शो विद यू। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अब जो है ये काम आप मेरी लाइफ में करेंगे, वो कैसे भाई साहब? कोई तो धुन है, कोई तो म्यूजिक है, एज यूजुअल, जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूंगी, आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड बस मुझे फटाफट से ये बताएंगे कि ये धुन है तो है किस फिल्म से। बड़ी ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है, 90s के एरा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज है एंड भाई इस जोड़ी का कहे तो क्या ही कहे। आइडेंटिफाई कर लिया तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा कह रही हूं तो क्यों कह रही हूं। लेकिन अगर सही जवाब पता चल गया तो कहां भेजना है? अरे यार, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000 1896 5000 1896। एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट एन ऑडियो मैसेज ताकि आपकी आवाज जो है मैं आवाम तक पहुंचा सकूं। एंड इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट करना मत भूलना, मिर्ची अंशु एंड मिर्ची वन कतर। चलिए जी, इस वक्त ये धुन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। हियर यू गो।

राइट यू, अब इतना सुना दिया भाई, इतना तो काफी नहीं, बहुत ही ज्यादा काफी है। फटाफट से बताइए फिल्म है तो है कौन सी। 5001896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज एंड टू ऑल द लवली फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड विद मी एट द मोमेंट, ये गाना आपके नाम डेडिकेटेड। एंजॉय।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ कामली कहती है,
0: कमिंग डियर।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
2: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी, नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
1: मिर्ची कहता है, हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

और अरिजीत सिंह ये निकिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो आपने और हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन जिस धुन की बात कही गई थी जरा उसकी कहानी पूरी हो जाए। Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस दोनों का तड़का जो है ना, मैं हर वक्त घोलते हुए लगाते हुए आई जाती हूँ। यानी दोनों की चीज़ें ना मेरी बड़ी फेवरेट है। हाय, मुझे मीठा खाना बड़ा पसंद है, साथ में जब तक खाना थोड़ा स्पाइसी ना होना ना मुझे मजा ना आता। अविंग सरदार, अब से कुछ देर पहले एक धुन है घंटे के उस पार जो मैंने आपके बीच पेश की थी, आपको सुनना था, आइडेंटिफाई कर, बस मुझे ये बताना था कि ये धुन है तो है किस फिल्म से। अब फटाफट से एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से वो धुन आपको एक बार फिर से सुनाती हूँ। एंड अगर आपको लगे कि उसे सुनते सुनते इस वक्त आपने आइडेंटिफाई कर दिया है तो फटाफट से करेक्ट आंसर मुझे अभी भी भेज देना, लेकिन कहाँ, 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, बाकी तो आवाम जनता की आवाज में आप तक पहुंचाई दूंगी। तो जरा देखें कि वो एक्साइटिंग सी इंटरेस्टिंग सी धुन है तो है कौन सी।

0: राइट यू, अब मैं ये बताऊं कि लोग बाग क्या ही कहते हैं।
1: पिक्चर का नाम है करण अर्जुन, स्टारिंग शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, अमरीश पुरी।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम साजिद। मैडम, वो धुन जो थी वो है करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे। थैंक यू।
3: गुड मॉर्निंग अंशू, दिस सॉन्ग फॉर फिल्म करण अर्जुन, सलमान खान एंड शाहरुख खान एंड काजोल, ये गाना है बंधन, प्यार का बंधन।
4: हाय अंशु, दिस इज नदीम, ये फिल्म है करण अर्जुन, सलमान खान, शाहरुख खान, काजल एंड ममता कुलकर्णी।
5: हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज नईम अहमद फ्रॉम इंडिया, दिस मूवी नेम इज करण अर्जुन।
6: हाय अंशु, दिस इज अल्ताफ, द ट्यून इज इन करण अर्जुन।
0: राइट यू, आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही। हाय, कोई भूले तो वो कैसे ही भूले, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। क्या बात है यार, तालियां हो जाएं। यार आज मदर्स डे के ओकेजन पर अगर हमने इस डायलॉग को याद ना किया तो फिर क्या ही किया। एंड सर,
5: दिस मूवी नेम इज करण अर्जुन।
6: हाय अंशु, दिस इज अल्ताफ, द ट्यून इज इन करण अर्जुन।
0: राइट यू, आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही। हाय, कोई भूले तो वो कैसे ही भूले, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। क्या बात है यार, तालियां हो जाएं। यार आज मदर्स डे के ओकेजन पर अगर हमने इस डायलॉग को याद ना किया तो फिर क्या ही

अंडर द बैनर ऑफ फ्लिपकार्ट प्रोडक्शंस। एंड स्टार कास्ट को अगर देखने की कोशिश करें, भाई साहब प्योर फायर, शाहरुख खान एज अर्जुन, सलमान खान एज करण एंड साथ ही लेजेंडरी राखी गुलजार, आइकॉनिक विलेन अमरीश पुरी एंड गॉर्जियस डिवास यानी कि काजोल एंड ममता कुलकर्णी। एंड अगर म्यूजिक की बात करूं तो इस फिल्म का म्यूजिक राजेश रोशन ने ही दिया एंड कई गाने क्या चार्ट बस्टर्स हुए, मैसिव ब्लॉकबस्टर्स इनफैक्ट। एंड सलमान और शाहरुख की केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यार इंटरेस्टिंगली उस वक्त दोनों यंग सुपरस्टार्स अपने करियर्स के पीक पर राइज कर रहे थे और इंडस्ट्री में कंपैरिजन जो है अक्सर इन दोनों के बीच कॉन्स्टेंटली होता था। बट ड्यूरिंग करण अर्जुन देयर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट talking points. In fact, the film is still remembered as one of Bollywood's most iconic two hero films ever made. The rest is history. Chaliye ji, mere Karan Arjun aayenge hum yaad rakhein ya gayo thakur to gayo hum yo yaad rakhein. Kumar Sanu aur Udit Narayan ki awaaz mein lekin is waqt ye khoobsurat sa pyara sa gaana hum sun hi le. Enjoy Bandi ka naam Anshu.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
3: हेलो,
5: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
5: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पैरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
4: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
5: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
5: ठीक है,
3: इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक
5: मॉडल
3: आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
5: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
5: हेलो,
3: यस
5: बताइए सर।
3: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
5: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियाँ हैं इस वक्त।
5: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी।
5: नहीं, उसी,
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियाँ गाजियाबाद से उठाई हैं। अच्छा। 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
5: चोरी की
3: है
5: क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
5: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
5: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
5: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
5: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
4: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
5: शाम को बात।
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
5: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियाँ है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
0: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
0: FM मिर्ची 1। इट्स हॉट, मिर्ची फ्रेश माल।
8: ग्रूवी फील और कैची वाइब के साथ सुनो जब तलक।

0: गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है ये गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना।
1: मैंने आपको सुना दिया, लेकिन भाई जब तलक मैं ना कहूँ तब तलक आप जो है ना इस बात को मानना नहीं है।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। कोई तो खास बात है जो इस वक्त मुझे आपको पहुंचानी है। देखिए बात इतनी है, जिंदगी में अगर खुशी को देखने की कोशिश करें ना तो इसके पैमाने काफी बड़े नहीं होते यार। जिंदगी की छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में बड़ी खुशियां दे जाती हैं। अब देखिए ना, जब आप दुनिया के इस कोने में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, घर से दूर अपने करियर को बनाने में संवारने की कोशिश करते रहते हैं, तो उस वक्त छोटी सी भी जरा वो एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, जरा सा कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाना है, तो ये बात जो है यार बड़ी खुशी देती है। एंड खासकर ये बात आप और हम अपने घर से दूर दूसरे घर पे काम करने वाले लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हुजूर। तो जरा देखिए आज का ये पैसा हमारी जिंदगी में क्या ही खुशी लेकर आ रहा है। वेल, अगर आज प्रॉमिस पर करना चाहेंगे तो आई पे मनी में रेस जो है काफी कमाल है। 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.83 एंड इसके साथ ही अगर लंकन रुपीज की बात करूँ तो इट इज 88.33, पाकिस्तानी रुपीज 77.20 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.36 एंड बांग्लादेशी टका 33.66। तो भैया जी ये तो हमने सारे के सारे रेट्स जो है आप तक पहुँचा दिए, आपको बता दिए। अब आप जो इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं आप भी मुझे कुछ बताने की तैयारी करें। भाई साहब कहाँ से हैं आप? अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो पाकिस्तान के किस इलाके से, किस स्टेट से आते हैं? एंड साथ ही भैया बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ से भी आप हैं यार, लेट्स गेट टू नो ईच अदर टुडे। आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू वेयर आर यू फ्रॉम। वेल, अगर मैं अपनी दास्तान बताने की कोशिश करूँ तो भैया मैं भारत से आती हूँ, भारत के स्टेट राज्य छत्तीसगढ़ से मैं आती हूँ। छत्तीसगढ़ में रायपुर जो है वो मेरे शहर का नाम है और वैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो अपनी कहानी, अपनी दास्तान तो मैंने बयां कर ली, आपकी जानने की सुनने के इंतजार में बेकरार बेसब्र है। Having said that, exchange rates is brought to you by

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
0: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

Well, Kailash Kher ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. Pata ye gaane se na meri badi khubsurat yaad judi hui hai. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, agar is gaane ki main baat karu ya iske baare mein sochne ki koshish karu, I still remember I was in the first year of my college and hamare yahan na competitions hua karte the, annual fest hua karte the, jahan par hame participate karna hota tha bahut sari different activities mein, and we did that and I participated in dance because maine kathak pe us samay masters kiya hua tha. I mean masters main kar rahi thi, bachelors mere ho chuke the ud antam tak, and I was really skeptical about the fact whether I'll be able to perform well or I'll be able to give my best, and that's when my mom come into play and she was like, jeetna ya haarna zindagi mein bahut zyada secondary hota hai, aap sahi maayne mein jeete ya haarte to tab ho jab aap apne dil se ye maan lo ki aapne jo kiya hai wo best kiya hai. Agar aapne best diya to aap jeet gaye, aur agar aapne best khud ki taur pe nahi diya to jeet kar bhi aap haar gaye. And wo ek baat thi meri mummy ki kahi hui jo aaj tak mere zehen pe baithi hui hai, and jab bhi main zindagi mein kuch naya karne ki koshish karu ye baat jo hai mujhe zarur yaad aati hai. Yaar maa jo hai na hamari life mein bahut alag kirdaar nibhati hai, bahut bahut khoobsurat. Mujhe aisa lagta hai ki zindagi mein isse zyada khoobsurat paatr ya koi rishta jo hai aapki life mein ho hi nahi sakta jo aapka aapki maa ke साथ होता है. बचपन की वो बात भी बहुत अच्छी तरह से याद है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब घर पे खाना बनता था सारे लोग खाते थे, उसके बाद ही अक्सर मम्मी खाया करती थी, एंड अगर उनके निवाले की वो थोड़ी सी सब्जी भी बची हो, एंड उस वक्त अगर हमें पता ना हो और हमें ऐसा लगे ना मम्मी सब्जी कितनी अच्छी बनी यार, थोड़ी सी और है क्या, हमें भरपूर खिलाने के बाद भी बिना किसी हिचकिचाहट के वो सबसे पहले आता था, हाँ बेटा बहुत है बिंदास का अच्छे से खा, मतलब उनके लिए बचे या ना बचे, वो पूरा हो या ना हो, कभी उस माँ ने अपने बारे में ये सोचा ही नहीं. एंड पता है क्या, दुनिया के किसी रिश्ते में ना ये निस्वार्थ प्यार आप देख ही नहीं सकते जो माँ में होता है. एंड एक बार जब आप माँ बनते हैं ना तो शायद ये फीलिंग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली आपके अंदर आती है, एंड दिस रियली इज द मोस्ट गॉर्जियस फीलिंग दैट वन कैन गो थ्रू. सो टू ऑल द मॉम्स आर कनेक्टेड विद मी एट द मोमेंट, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे. एंड अगर आपकी मम्मी हैं भैया उन्हें अपनी तरफ से तो विश करें, लेकिन मेरी तरफ से भी ना जरूर जरूर विश करें. एंड आपकी वाइफ अगर एक माँ है उसके लिए आज ये दिन स्पेशल बनाने में कहीं कोई कमी ना छोड़ें. चलिए जी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ या रहमान का साथ एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, माँ पर है, थोड़ा सा पेनफुल है, बट आई रियली लव दिस ट्रैक, प्लेइंग राइट हियर फॉर यू ऑन मिर्ची. एंजॉय बंदी का नाम अंशु.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: उदय
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट हूँ दैट
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

फेस की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ दिस आइकॉनिक ट्रैक एक बार फिर से सुन लिया, लेकिन ये कुछ खास बात है जो मुझे अब आप तक पहुंचानी है।

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, aapki zindagi mein mithas and spice ka tadka lagate hue ek bar phir se aa chuki hu. Now, this is going to be really exciting. Exciting na ho to kyun na ho. Jis baat ka main besabri se intezaar tha, wo gradually hamari zindagi mein wapas hi aa rahi hai. Well, I'm talking about Project Qatar 2026. एब्सोल्युटली एक बार फिर से जितने भी मैसिव एंड मेगा एग्जीबिशंस हैं इवेंट्स हैं वो कतर में दोबारा होने जा रहे हैं एंड अगर प्रोजेक्ट कतर की बात करें एक ऐसी जगह है जहां पे आप ना ही सिर्फ कतर बल्कि पूरे के पूरे रीजन के बड़े बड़े बिल्डर्स को आप देखते हैं जो कि एक साथ आते हैं ना ही सिर्फ डिस्कशंस किए जाते हैं ना ही सिर्फ एग्जीबिशंस किए जाते हैं लेकिन कतर का फ्यूचर आखिरकार कैसे नजर आएगा एंड आने वाला कल हमारे बीच कैसा होगा ये सारी की सारी बातें जो है हमारे बीच पेश होती हैं एंड एक बार फिर से दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर 9th of June अंटिल 11th of June वी आर गोना बी विटनेसिंग live this magnificent event so what are you waiting for why badi badi firms and companies jo already is event ke sath khud ko associate karna shuru kar chuki hain hum to aapse ye kahenge ki agar aapko lage ki aap humse mulaqat karni hai to bas yahan par pahunch jana hum bhi aapko yahan par mil hi jayenge yaar bada acha lag raha hai sach kahun pehli baar jab itne saalon mein qatar mein I guess covid ke baad jab humne zara sa maujooda sthiti ke karan halat ke karan kuch halt hote hue dekha tab realize hua ki jin baaton ko hum bada hi basic and aasan samajh ke rakhte the wo hamari zindagi mein kitni extraordinary hai कि हमारे आसपास कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहना हमारा आसानी से फिजिबल तौर से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाना या तो फिर यार खुले आसमान के नीचे यू नो अपने घर पर एकदम सुकून से सो पाना या बाहर चल पाना नाउ दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलवेज कंसिडर टू बी वेरी बेसिक ऑर्डिनरी बट इंडीड दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के ये सब बातें आपको जो है वो सिखा ही जाते हैं बढ़िया है जी इतना ही कहूँगी हर पल जो है दिल से जिए खुशी से जिए अच्छे से जिए एंड हर एक दिन जैसे जैसे अच्छे से बीते ना तो ऊपर वाले का दिल से शुक्रिया अदा करते चलें क्योंकि उसी की रहम है कि हम सब एक बार फिर से महफूज हैं एंड अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तौर तरीके से जी पा रहे हैं चलिए ये बात तो काफ़ी अच्छी वाली हो गई दलेर मेहंदी की आवाज़ में अभी अगला गाना पावर पैक सुना दिया जाए एन्जॉय

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है,
0: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
2: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
1: मिर्ची कहता है, हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjetva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
1: जीती है।
2: हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं, तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: वर्कशॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
1: हाँ?
2: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000। सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
2: मैं आपको
1: मैं बात बात की बात नहीं है मेरी, सुन। तो कोर्ट से लेके सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटू जाएंगे ट्राई लेने, रोटू का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा।
2: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
1: नहीं। सर
2: पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर सर, सर
3: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका। मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.
9: 89.6
4: Mirchi.

0: ये खूबसूरत सी आवाज इस गाने ने फ्रॉम द फिल्म डंकी मन्नू को पॉपुलर जो है वो बना दिया, ये बात होता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड कोई तो बचपन की खास बात है जो एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। यार मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल टाइम के दोस्त हुआ करते थे, यू नो हमारे फ्रेंड्स, दे वर द मोस्ट अमेजिंग वंस। उम्र के दूसरे पड़ाव में हमने बहुत सारे दोस्त बनाए, यू नो कॉलेज टाइम में हमने अलग दोस्त बनाए, उसके बाद अपने करियर के चलते यू नो प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी हमने बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे, लेकिन जो स्कूल वाली दोस्ती हुआ करती थी ना भाई, ये बड़ी अलग बड़ी कमाल हुआ करती थी। बड़े मासूम हम, बड़े नादान, बस इस बात से खुश हुआ जाया करते थे कि भैया अगर हम किताब लेकर नहीं आए, हम बुक साथ में लेकर नहीं आए, हमें पनिशमेंट मिली है, तो ये बात तो तय थी कि हमारा दोस्त जो है हमारे लिए बाहर ज़रूर निकलेगा, अपनी हुई लाई हुई किताब को छुपा के निकलेगा, लेकिन ज़रूर निकलेगा। एंड उसमें भी एक अलग मज़ा था, क्लास के बाहर खड़े होकर अपनी एक अलग मस्ती करना, भले हम नील डाउन क्यों ना है। हैविंग सेड दैट, जब हम चारों के चारों दोस्त या पाँच छः दोस्त एक साथ, भैया हमारी असल पार्टी जो है वो क्लास के बाहर ही चल रही है, अंदर तो पढ़ाई चल रही है, पार्टी तो बाहर हो रही है। एंड हमारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह से पता होता था हमारे बिना कुछ कहे कि हमारे पेरेंट्स को के सामने हमारे बिहाफ में झूठ कैसे बोलना है ना। हम ना उनसे कुछ कहते थे ना हम इन कुछ बताने की कोशिश करते थे। दरअसल माँ की आत्मा जो है ना उनके अंदर भी बसती थी कि मम्मी पापा ने अगर कुछ सवाल पूछा हमसे, नहीं उनसे हमारी इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो हमसे ना ये पूछेंगे ना ही हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन हमारे बहाव में कुछ इस तरह से यू नो वकालत कर जवाब देंगे कि लगेगा भैया सुप्रीम कोर्ट का वकील तो बस यहीं बैठा है। एंड आई एम रियली मिसिंग माई स्कूल डेज। समो ऐसा लगता है कि यार जिंदगी अगर एक बार फिर से जीने का मौका देना तो मैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत फेज यानी कि अपने स्कूल के दौर पर जरूर जाऊंगी। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई स्कूल का दोस्त है, फ्रेंड है, जिससे आप आज भी टच में हैं, कनेक्टेड हैं, एंड जो बातें मैंने इस वक्त आपके बीच पेश की हैं कहीं हैं, क्या आप उससे रिलेट कर सकते हैं? 5000 1896 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़ यानी अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
2: ओके टेक केयर डियर,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
3: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Well, 1998 में रिलीज हुई खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम था दुश्मन, लेकिन सच कहूँ कुछ ऐसी दोस्ती इस गाने से हमारी हुई कि भाई आज भी कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं ना तो फ्रेशनेस की एक वाइब जो है हमें ज़रूर फील होती है। लेकिन इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात क्या थी फतेह, वो है काजल की आँखें, क्या कमाल लगी यार। एंड संजय दत्त एंड काजल ऑन स्क्रीन इतने खूबसूरत या इतने अच्छे लग सकते हैं, शायद इस फिल्म ने हमें ये बात ज़रूर बताई।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने आ चुकी हूँ। एंड भाई कोई तो खाने की बातचीत है जो एक बार मैं फिर से करूंगी। आपको मालूम है कि जैसे ही घड़ी का ये जो कांटा है एक बजे की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है, उसके पहले मेरा ना भूख का सिलसिला जो है ये शुरू हो जाता है। एंड इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आरजे मस्त मौला गौरव भी हैं। गौरव, आप जो है मैं एक सवाल करने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको सही जवाब पता चल गया है तो उसे समझने की एनालाइज करने की कोशिश करना, बाकी मैं जो है लिसनर से तो पूछ रही हूँ। एंड अगर आपको लगे कि खाने की पहले आपने बुझा ली तो फटाफट से मुझे आप भेजेंगे करेक्ट आंसर कहाँ, 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए जी जरा सुन लें, छेने से बनता हूं, छेना जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है उसे छेना कहते हैं। छेने से बनता हूं, रस में नहाता हूं, हर मीठे दिल की पहली पसंद कहलाता हूं, सफेद सफेद नरम सा गोल मटोल, बताओ कौन हूं मैं जो जीत ले हर दिल जाता हूं। देखिए गौरव जो है अपनी जुबानी जवाब बता चुके हैं, अगर आपको लगता है आपको सुनाई दिया तो लगता है ये आंसर करेक्ट है तो हमें बताना जरूर, नहीं पता तो आपके हिसाब से सही जवाब क्या है आप मुझे ये पक्का बताना। 5000186 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल धुरंधर का टाइटल ट्रैक आपके लिए, एंजॉय। बंदी का अंशु।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज दी ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Jassi.
5: Jassi? Kaun si wali Jassi?
4: Jassi who has come, auntie ji?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi.
6: It's hot.

0: बोले अरिजीत सिंह ने निकिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज में लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस मीठी सी मिठाई की बात हुई थी, जरा उसकी दास्तान इस वक्त आपके बीच पेश कर दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, जहाँ पे एक तरफ आपकी जिंदगी में मिठास, वहीं दूसरी तरफ स्पाइस का तड़का जो है मैं हर दिन लेकर आई जाती हूँ। वैसे अब से कुछ देर पहले आपके बीच पेश की थी मैंने एक पहेली, आपको उस पहेली को बुझाना था, सुलझाना था एंड बस आइडेंटिफाई करना था कि मैं कौन सी मिठाई की आज बात कर रही हूँ। एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हू हैव जस्ट जॉइंड, मैं जल्दी से पहेली जो है एक बार फिर से दोहराती हूँ। अगर आपको लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने इसे पहचान लिया तो मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर दे देना, लेकिन कहाँ 5000018965000018 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची यू वन कतरिया मिर्ची अंशु। ऑलराइट देन, भाई पहेली ये है द छेने से बनता हूँ, रस में नहाता हूँ, हर मीठे दिल की पहली पसंद कहलाता हूँ, मैं सफेद सफेद सा नर्म सा गोल मटोल, बताओ मैं जरा कौन हूँ जो हर दिल बस जीत ही जाता हूँ। Meanwhile, देखिए लोगों ने क्या कहा है।
2: रसगुल्ला।
3: Hi Anju, this is Anjali, this is Rasgulla, favorite sweet. Bye.
4: It Rasgulla.
0: Well, absolutely, आप सबने जो कहा वो पूरी तरह से सही हुई, तालियां हो जाएं। चलिए जी, इस वक्त रसगुल्ले की कहानी जो है ना मैं आपके बीच पेश कर ही दूं कि इसका ओरिजिन हुआ तो क्या हुआ और कैसे हुआ, कहां से हुआ। देखिए सबसे पहली बात, वेस्ट बंगाल की शान के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो है रसोगुल्ला इनफैक्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भैया उड़ीसा का ये कहना है कि हमारा जो इससे रिश्ता है ये काफी पुराना है। वैसे इतिहास के पन्नों में मिठास की बहस जो है आज भी चलती है कि वेस्ट बंगाल या उड़ीसा अगर रसगुल्ला या रसगुल्ला का ओरिजिन हुआ तो कहाँ से हुआ। देखिए जहाँ से भी हुआ हम जो है खाने में मजा लेने में यकीन रखते हैं। वैसे माना जाता है कि मॉडर्न रसगुल्ले को 19th सेंचुरी में नोबिन चंद्र दास ने कोलकाता में एक नई पहचान दी। छेने को गोल गोल प्यार से तैयार किया गया, फिर उसे चीनी की चाशनी में धीरे धीरे पकाया गया एंड बस जन्म हुआ उस मिठास का जो आज हर खुशी का हिस्सा बन चुका है। वही अगर मैं कहूँ कि रसगुल्ला का बेस्ट फ्रेंड कौन हो तो मेरे जहन में आता है गुलाब जामुन। हाय, ये दो मिठाइयां ऐसी हैं जिनसे दूर रह पाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आपके हिसाब से रसगुल्ले का बेस्ट फ्रेंड हो तो कौन हो? 5000018965 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। विद दैट माय माउथ इज वाटरिंग एंड आई एम स्टार्विंग, सो इट्स टाइम फॉर मी टू हेड टू माय लंच टेबल। सी यू ऑल टुमारो, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। जाने से पहले अरिजीत सिंह की आवाज एंड अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: यार आज ना मुझे बचपन का वो किस्सा याद आ रहा है जब मैंने पहली बार हाल ही वर्ड सुना था।
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Virgie. अरे यार, एक शाम की बात है जब दूरदर्शन पर ना वो शाम वाली न्यूज जो होती थी ना वो चल रही थी, और न्यूज रीडर ने वर्ड कहा हाल ही में। आगे की न्यूज मुझे याद नहीं क्योंकि मेरी सुई अटक गई थी हाल ही पर। अब मैंने पलट कर मम्मा से पूछा कि यार मम्मा, ये हाल ही कौन सी जगह है। मम्मा तब जोर जोर से हंसी और मैं आज तक हंसती हूँ जब इस किस्से को याद करती हूँ। तो क्या रियली थॉट कि हाल ही कोई जगह थी, बट हे, हाल ही टाइम की दुनिया में जगह ही तो है यार, एंड दैट इज राइट नाउ। तो चलो हाल ही में जीते हुए 90s में चलते और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vie va la burga.
1: Mirchi, burga. Hello. Sir, very good evening, Mirchi. बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
2: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
1: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन।
4: वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
4: यस सर,
2: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
2: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने कोई यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
2: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर,
2: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
4: सर
2: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
2: मैं
4: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का फोन।
1: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
1: यस सर,
2: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
1: सर कौन?
2: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाए जा रहा है।
1: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
2: यार,
1: भी
2: क्या,
1: मैं
2: क्या नहीं होता यार?
1: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
2: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे
1: सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, ये तो हमारी सर्विस है, ऐसी गलती अब आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार तुम लोग ना
4: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: राजा हिंदुस्तानी की रिलीज के बाद जब भी मासी और कजिन्स लंबी छुट्टी स्पेंड करके नेक्स्ट डे जाने वाले होते थे ना, तो हम ओवर द टॉप एक्टिंग करते हुए यही गाना गुनगुना रहे होते थे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड फिल्म राजा हिंदुस्तानी भी अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म थी। तो मैंने जब ये फिल्म देखी थी बचपन में, तो मुझे उस टाइम पसंद नहीं आई थी, मेरा टेस्ट वैसा नहीं था ना यार, लेकिन उससे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। एंड द मूवी वॉज लाइक बाय अ लॉट मेनी अदर पीपल। लेकिन पता है, इस फिल्म को करने के लिए आमिर खान तैयार ही नहीं थे, लेकिन देन धर्मेश दर्शन कन्विंस्ड हिम कि ये फिल्म बहुत बड़ी कमर्शियल हिट रहेगी, विच टर्न ट्रू। और इस फिल्म से करिश्मा को एक नए अवतार में देखा गया था। I remember looking at her for the first time in a straight hair look and thinking, wow! उस टाइम मेरी इतनी वोकैबुलरी हुआ करती थी, तो वाओ के अलावा और कोई शब्द नहीं निकला मेरे मुंह से। और इस मेकओवर ने करिश्मा को फैशन आइकॉन बना दिया था। एंड नॉट जस्ट स्टाइलिंग, बल्कि उनकी एक्टिंग भी इस मूवी में बहुत पावरफुल थी। सो मच सो दैट कि लोगों ने करिश्मा को रानी हिंदुस्तानी बुलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आमिर थोड़े खफा हो गए थे। खफा से भी कौन करता है वफा यार। इसे करते हैं दफा और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
0: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे
3: मिर्ची इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है राजा हिंदुस्तानी का द फेमस किसिंग सीन इज सेट टू बी बॉलीवुड्स लॉन्गेस्ट किसिंग सीन.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: जी हाँ, वे बिफोर मर्डर हैपेंड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राजा हिंदुस्तानी का ये किसिंग सीन शूट हुआ था. लेकिन टाइम्स देन वर वेरी डिफरेंट, सो मच सो दैट कि करिश्मा कपूर वाज वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग द सीन एंड देन शी आस्क्ड हर मॉम टू बी प्रेजेंट ऑन द सेट्स. और इस सीन को शूट करने में 3 दिन एंड 47 टेक्स लगे एंड बोथ आमिर एंड करिश्मा वो वेटिंग कि ये सीन कब खत्म हो. फिल्म मेकर्स वांटेड टू पुट दिस सीन का पिक्चर ऑन द पोस्टर्स ऑफ द फिल्म ताकि फिल्म के बारे में बातचीत हो, थोड़ी कहानियां बने, लेकिन इवेंचुअली ड्रॉप द आइडिया. अच्छा ही किया क्योंकि तब तो डेफिनेटली लोगों की पाचन शक्ति इस सीन को पचाने की तो नहीं ही थी. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर, जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खट खट, हू दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi,
6: it's hot. It's hot.

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है,
0: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
2: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
1: मिर्ची कहता है, हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: खूब जमता था रंग जब संडे मॉर्निंग को मिल जाते थे इतने सारे यार, बलूद पापा बेयर, मैडम महालिंगम, लुई, डॉन करनाज, शेर खान, मॉली और किट। याद है
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: संडे की सुबह जिस वक्त टेल्स पे आता, हमारे खानदान का हर बच्चा स्टैच्यू बन जाता और वो भी टीवी के सामने। स्ट्रीट स्मार्ट किट और बल्लू की जोड़ी कभी चेजिंग या कभी बीइंग चेज्ड बाय तूफानी लुटेरा डॉन करनाज। यू नो डॉन करनाज की आवाज हिंदी में किसने डब करी थी? जावेद जाफरी ने। एंड बड़ा एक कमाल डब किया था यार उन्होंने, आज तक मुझे डॉन करनाज याद है। एंड यू नो ये कार्टून को बनाने वाले जिम मैगन, हु वाज आल्सो द को क्रिएटर ऑफ डकटेल्स, वो लॉन्च पैड में कॉक को लेकर डकटेल्स का स्पिन ऑफ बनाना चाह रहे थे, बट इवेंचुअली देन जंगल बुक के कैरेक्टर्स बलू और शेर खान को लेकर उन्हें कपड़े पहनाकर टेल्सपिन की शुरुआत हो गई। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आपको पता है इस शो से मैंने क्या सीखा है? बिकॉज ऑफ मॉली, मैडम महालिंगम की क्यूट सी छोटी सी बेटी, आई गॉट टू नो कि डिलिशियस का सही प्रोनंसिएशन क्या है। इट इज डिशियस। यार टेल्सपिन की बातें करते करते ना एक क्रेविंग सी हो गई यार टू वॉच टेल्सपिन, एंड आई चेक्ड इट ऑनलाइन बाय द वे। अगर आपको भी देखना हो ना तो इट इज अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। यू मोस्ट वेलकम। और मेरे पास है वक्त बहुत कम और बातें बहुत ज्यादा, तो आगे बढ़े। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
2: साथिया, मधम मधम तेरी गीली हंसी।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए।
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है। चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है
1: आपकी? हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए।
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद

0: थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना।
1: मैंने बीए किया है।
0: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है।
1: okay.
0: और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
1: पर क्यों?
0: नहीं मैं ऐसे ही है पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है बताइए।
0: नहीं मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती। मैं
1: हील तो कभी पहनते भी हैं कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
0: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
1: ज्यादातर नहीं।
0: हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
0: नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते
1: हैं। मेरी बात सुनिए
0: दोबारा। कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो
0: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या
1: है?
0: नहीं मैं दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
1: नहीं बकवास।
0: अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत काटिएगा, मेरी बात सुनिए रेखा। रेखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद में डैडी से ही करिएगा।
0: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
0: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
4: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
5: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर।
4: क्यों सब सस्ता हो जाएगा क्या?
5: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में। मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
4: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
5: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
2: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरदर्शन पर रात 12 बजे के बाद क्या आता था इन द लेट 90s, तो क्या जवाब दोगे?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: अगर आपका साबुन फास्ट है तो आप समझ गए होंगे कि जो आता था दैट वॉज अ डीजे नाइट पार्टी का म्यूजिक। एंड यू नो व्हाट, मैं कभी कभी ना इस कलरफुल स्क्रीन को भी म्यूट करके देखा करती थी, क्योंकि ऑनेस्टली ये आवाज बड़ी बुरी लगती थी। इट यूज्ड टू फील लाइक अ पनिशमेंट। लेकिन जो कलर बार स्क्रीन पर आते थे ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। लाइक आई कैन सजेस्ट कि अगर आप कोई 90s थीम की पार्टी रखो ना, तो उसके इनवाइट के कवर पेज पर यू कैन एक्चुअली यूज दीज कलर बार्स। दे लुक सो इंटरेस्टिंग। इफ यू कैन रिमेम्बर, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन से कलर्स थे स्क्रीन के कलर बार्स में? आई नो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है। एंड हु नोज, समवन हैज द आंसर टू इट। तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
0: ओके टेक केयर डियर।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकन। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आशिकियां कर रहे तो 90s की आशिकी फिल्म जैसी करो यारो.
2: Mirchi, Tugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. आशिकी मूवी का ये गाना तो सबको याद है.

वेल, नदीम श्रवण का कंपोज किया गया ये गाना, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने है, इस गाने की धुन उठाई गई है फ्रॉम अ पाकिस्तानी सॉन्ग। जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर सईद गिलानी की है, और शायद इस गाने की धुन कॉपी होने का इनको भी कोई गिला नहीं, तभी तो मीडिया में किसी ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन नॉट टू वरी, मैं हूँ ना 90s और अर्ली 2000s की कॉपीड मूवीज और गानों की इन्फॉर्मेशन आपके पेशे खिदमत करने के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो फॉरन डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood
1: Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Khat khat.
6: Kaun hai?
5: Ishant.
6: Ishant kaun?
5: Ishant Gadadhari Bhim. Ishant.
6: Khat khat. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है मूवी के लिए यश राज की पहली प्रेफरेंस वॉज अमीशा पटेल।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन जब अमीशा को रोल ऑफर किया गया तो वो वन फिल्म वंडर बनी हुई थी। कहो ना प्यार है की रिलीज के बाद उनके सुरखाब के पर लग गए थे यार और वो सुपर स्टार बन गई थी और उन्होंने फिल्म को ना बोल दिया क्योंकि वो न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी, जिस पर उदय चोपड़ा को बड़ा गुस्सा आया। वो इतने नाराज हुए कि ही डिसाइडेड कि अब अमीशा पटेल को यशराज बैनर्स के लिए कभी कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन यू नेवर से नेवर राइट। Eventually हुआ ये कि उन्हें थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने थोड़ा ही काम किया और उनका रोल जो प्यार है की रिलीज के बाद उनके सुरखाब के पर लग गए थे यार और वो सुपर स्टार बन गई थी और उन्होंने फिल्म को ना बोल दिया क्योंकि वो न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी, जिस पर उदय चोपड़ा को बड़ा गुस्सा आया। वो इतने नाराज हुए कि ही डिसाइडेड कि अब अमीशा पटेल को यशराज बैनर्स के लिए कभी कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन यू नेवर से नेवर राइट। इवेंचुअली हुआ ये कि उन्हें थोड़ा

गाना और उनकी परफॉर्मेंस उस गाने में वो याद रह गई, लेकिन हाँ उन्होंने उससे ज्यादा काम किया था उस फिल्म में। वो जो एक कहावत है ना वो यहाँ पे एकदम एप्ट होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: उसको पेरे को पीछे लगा के उसको स्टीम को आगे करो।
3: हेलो
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरो है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने। दोनों आगे।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक
4: मॉडल,
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका? 2000
4: है।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये

0: ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह। और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म। मैं नहीं जानता कहाँ की गाड़ी थी, कुछ था।
1: बात कर रहे
0: हेलो
1: सर।
0: हाँ जी कौन बोल रहे भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
0: अजय जी ऐसा है, मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा आपकी अपनी हैं?
0: अब उसमें आपको क्या लेना है यार, मेरी
1: नहीं,
0: अपनी
1: नहीं, उसी
0: मैं आपको बताता हूँ। 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं।
1: अच्छा।
0: 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
0: हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: पहले देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
0: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
0: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
0: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
0: आप नंबर लिख लेना लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
2: हाँ अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
0: हाँ जी भाई।
1: हाँ।
0: तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को बताता
0: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या कर रहा हूँ शाम को फोन करके बताऊँ।
0: अजय जी ऐसा है, ये जितनी गाड़ियाँ है ना ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
1: तो आपको देखना चाह रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भी है।
1: डियर घड़ी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इस नाम को लोग बड़े ही प्रैक्टिकली ले लेते हैं। कोई कपड़ों की तय की तो कुछ हाथ में पहनने वाली घड़ी बतला देते हैं, लेकिन तुम तो इंस्टेंट घड़ी थी जो हम अपने हाथ पर बटका बनाकर दांतों के बाइट से डिजाइन किया करते थे। आज की महंगी से महंगी घड़ियों के डिजाइन भी इसके आगे पानी भरा करते हैं। आज लोग इंसान के बाइट को पॉइजनस बोलते हैं, और तब हम दोस्त एक दूसरे के हाथों पर अपने दांतों से ये डिजाइन दे दिया करते थे और कहते थे कि देख कितना सुंदर लग रहा है ना। तुम्हें पता है, एकदम से तुम्हारी याद आई तो तुम्हें चिट्ठी लिखने से पहले मैंने अपने हाथों पर तुम्हें अपने दांतों से छाप दिया था। तुम्हें इंस्टेंट टैटू कहें या घड़ी, जो भी तुम्हें नाम दे, एक बात तो पक्की है, मैंने कई बार आज भी अपने हाथों पर तुम्हें बनाकर अपने बचपन के प्यार को नापा है। तुम्हें याद करती तुम्हारी डिजाइनर सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
0: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
3: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। धीरे धीरे

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना, ये जो गा रहा है ना, इसे हम फैमिली पिकनिक्स पे अक्सर गाया करते थे और बड़ों का ये फेवरेट गाना हुआ करता था।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: अलका याग्निक जी और कुमार सानू की आवाज में दिस ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड एनर्जेटिक ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हम है राही प्यार के।

ये गाना नहीं है भाई, ये पूरा जीवन का फसाना है कि यार अगर साथ रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। एंड दैट इज सो ट्रू यार। क्या देखो, चीजें, रिलेशनशिप, पैसा, नौकरियां, ये सब तो आती जाती रहती हैं यार, लेकिन जब तक हमारे पास हमारी फैमिली की, हमारे अपनों की बैकिंग होती है ना, तब तक हमें ज्यादा चीजें हिला नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बार मम्मी या पापा आके कंधे पर हाथ रख के कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे, और बस सब तभी ठीक हो जाता है कि नहीं? और ये जो लाइन्स है ना कि पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ओए होए होए, इसे तो जीवन का मंत्रा बना लेना चाहिए, नहीं क्या? चलो जी, अब इस गाने को आपकी 90s की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
2: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
1: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाने ही पड़े.
2: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
1: ऐसा ही हूँ मैं.
2: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
1: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट. बॉलीवुड बोल डाल,
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: यार बजट ही नहीं बन रहा है. प्राइसेस देखें, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
4: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर.
3: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
4: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में. मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th टू 19th में. इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
3: किलर ऑफर्स. मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
4: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
5: खट खट,
6: हू देयर?
5: हुम आर यू?
6: हुम आर यू हू?
5: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
6: खट खट, हू देयर?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है
0: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। मैजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

ओए होए क्या खेला है गराफा वालों। मबरूक मबरूक अलगराफा के जितने भी फैंस उनको मबरूक। कल हमने एमर कप का फाइनल देखा और कह सकते हैं कि एक तरफ जबरदस्त तरीके का मैच नहीं देख पाए क्योंकि पूरी तरीके से गराफा मैच में छा रहा और ब्राहिमी की टीम ने कमाल किया। ब्राहिमी ने हैट्रिक मार दी एंड अरबा वहद स्कोर लाइन था। असद सिर्फ एक गोल कर पाई एंड कल जादू चल नहीं पाया फीफी का। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं कि खेलेगा वही, खेलेगा सही, जीतेगा वही जो मेहनत करेगा और मेहनत दिख रही थी मैदान पे, पूरी तरीके से छाए हुए थे। फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। ग्राउंड पे एनर्जी जबरदस्त एंड आमिर कप का एक और वर्जन बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया। और आज दी एमिर हसैन शेख तंबीर हमाद अल थानी सर ने अपने लंच भी दिया लसेल पैलेस में इन दी ऑनर ऑफ प्लेयर्स कोचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अल गराफा स्पोर्ट्स क्लब की चैंपियन टीम आज लंच पर गई थी एंड असद की टीम को भी बुलाया गया था। खोड़े मीडिया प्रोफेशनल्स भी थे रिप्रेजेंटेटिव एंड कह सकता हूं एक शानदार टूर्नामेंट खत्म हुआ और एमिर कप का चैंपियन बनकर अल गराफा ने अपनी टाइटल डिफेंड की। मबरूक हबीबी अल्फ अल्फ मबरूक और उम्मीद है अगले साल भी आप अपनी ट्रॉफी डिफेंड करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। फिलहाल मसमोलो गौरव आ गया है अपने शो को आपके लिए परोसने मिर्ची पर ढेर सारी बातें लेकर मिर्ची थॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieta la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए?
1: सर्विस के लिए जीती?
2: हाँ सर। सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: वर्कशॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा
1: हूँ,
2: 40,000
1: रखा तू नहीं चाची, बकवास कर रहा है
2: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
2: मैं आपको
1: बात वास्त की बात नहीं है, मेरी सुन तो। कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटू जाएंगे पाई लेने, रोटू का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा? अच्छा
2: सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
1: नहीं।
2: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर
2: सर, सर आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive. Mirchi Mother Tongue. Mirchi Mother Tongue.
5: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, तो विदेशी माँ कहती है
6: ओके टेक केयर डियर,
5: और वहीं मदर इंडिया कहती है
7: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
5: मिर्ची कहती

0: और कुछ लोगों की आदत कैसी होती है ना, वो दूसरों की मदद करने में बड़ा बिलीव करते हैं। और जब भी मदद की दूसरों की बात आती है, देखिए अब मेरा नाम आ ही जाता है क्योंकि मुझे दूसरों से मदद चाहिए होती है। जैसे महीने में उधार चाहिए होता है, किसी दोस्त की कार चाहिए होती है, उनके महंगे सामान मुझे जरूरी रखते हैं, तो मैं मदद का बहुत ज्यादा साथी हूँ। फिलहाल मदद करने वालों को वॉलंटियर भी कहते हैं। और कतर ने अपना एक ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म के लिए। ये कंट्री के वॉलंटियर वर्क सिस्टम को बिल्कुल यूनिफाइड बनाएगा, एक गवर्नेंस के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, एफिशिएंसी के थ्रू। कतर के जबरदस्त वॉलंटियर्स की टीम तैयार करेगा। एंड आज इस बात की तारीफ खुद प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिम अल थानी ने कही है, जब उन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम की लॉन्चिंग ये वॉलंटियर इफेक्ट को और मजबूत बनाएगी। कम्युनिटी मेंबर्स जो लगातार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, डिजायर टू गिव, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो तैयार हो जाइए, ये नया प्लेटफॉर्म तैयार है और इसके लिए आप लॉग इन कर सकते हो volunteer.gov.qa। रिमेंबर volunteer.gov.qa। अगर आप चाहते हो 18 से ऊपर हो और ऐसे किसी की मदद करो तो ये मौका आपके लिए आया है। बन जाओ कतर में वॉलंटियर और बताओ लोगों को कतर की खूबियां और लोगों की मदद कर उनसे ढेर सारी दुआएं कमाओ जैसे मैं कमाता हूं। नाम ही है स्मॉलर गौरव, आपसे एंटरटेनमेंट की दुआएं लेता रहता हूं, गाने अच्छे अच्छे सुनाता रहता हूं। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जद दौड़े दोहा मेट्रो पूरा कतर है घूमदा। अरे भाई हमारे वहाँ अगर कार नहीं है कोई बात नहीं, दोस्तों की कार नहीं कोई बात नहीं, दोहा मेट्रो मेट्रोलिंक बसेस आपका पूरा ख्याल रखती है 7 सालों से।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, पूरे 7 साल हो गए, 292 मिलियन पैसेंजर्स ने अब तक स्पीड सेफ्टी एंड स्टाइलिश दोहा मेट्रो का सफर पूरा कर लिया। और सच बोले तो दोहा में मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये स्मार्ट कतर, क्लीन स्टेशन, फुल एयर कंडीशन कंफर्ट और उसके साथ मिलने वाले मेट्रोलिंक बसेस की वजह से दुनिया का वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल कन्वीनियंट मेट्रो सिस्टम लगता है। अब चाहे ऑफिस जाना हो, स्टेडियम, मॉल, एयरपोर्ट, कहीं भी जाना हो ना, दोहा मेट्रो के पास आपके लिए हर जगह का कनेक्शन है। टाइम भी बचाता है, ट्रैफिक जैम से बचाता है और इस पाप वाली इस चीज से, फीलिंग से कि आप कहीं ना कहीं इस कार्बन इमिशन के साथ दुनिया में पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ये वाली फीलिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाती है दोहा मेट्रो के साथ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कतर में कोई भी हो ना, उसके लिए ये दोहा मेट्रो, लुसेल ट्राम सब इतना अच्छा है। और पिछले 7 सालों से लगातार कतर के कोने कोने तक ये हमें पहुंचा रहा है। आज दोहा मेट्रो, लुसेल ट्राम, सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Yes, क्योंकि इनकी वजह से हमारा हर सफर आसान हो जाता है और इनकी मुस्कुराहट से हम कितने भी टेंशन में हो, हम मेट्रो में बैठकर कुछ अच्छा ही फील कर रहे होते हैं। लगता है यार चलो दुनिया हमें देख के मुस्कुरा रही है तो हम भी मुस्कुराते रहे। आप मुस्कुराते रहिए और अगली बार जब किसी मेट्रो वाले भाई साहब को या मेट्रोलिंक बस के किसी कैप्टन को, पायलट को बस चलाते देखिए तो उसको प्यार से एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल दीजिए ना, फिर देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा जब वो मुस्कुराएंगे आपके साथ। मिर्ची थॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कॉन्सेप्ट में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
6: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर।
5: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
6: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में। मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th टू 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
5: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
6: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
7: रिफाप इज क्रिक, 2026 इज ऑफिशियली अ रैप। Huge thanks to our 12 teams and the RCCI Hubballi chapter. Thanks to our partners, SST Group, TNT Media, and AK Steel for fueling the drive. Refa, Bizcrick, where business wins!
8: Mirchi Mother Tongue.
9: Mirchi Mother Tongue.
10: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ calmly कहती है,
11: Coming dear.
10: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
12: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी, नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
10: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल।
13: माजिकल।
10: विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
13: मदर्स डे।
8: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाना खत्म हुआ परम सुंदरी और ये परम सुंदर लड़का आपके साथ आ गया। और कह सकते हैं कि मौसम का ये परम सुंदर सफर अभी भी जारी है। मई आ गई है, 10 तारीख है आज, और उसके बावजूद मौसम ठीक ठाक ही बना हुआ है। बस दोस्त इतना ही कहना चाहता हूँ, अब इस मौसम को गर्मी की नजर तो लगने ही वाली है। और अब हमारे नए साथी हैं वेदर अपडेट के लिए, यस RSL ग्रुप।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट, तो बात करें दिन का मैक्सिमम तापमान आज जहां पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं मिनिमम अराउंड 29 आएगा। हवाओं की रफ्तार जबरदस्त चल रही है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। एंड जिंदगी में हमारा आपका यह सफर आसान बनता रहे उसके लिए जरूरी है कि हम पानी जरूर पीते रहे। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीना थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि गर्मी आने वाली है। एंड साथ ही साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आपका साथ देते हैं, और ऐसे ही अब RSL ग्रुप वेदर अपडेट में हमारे साथ आएगा रोज वेदर चेक लेकर। तो बस हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
2: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: आदित्य रिकारी कमाल किया है श्रेया घोषाल के साथ मिलकर तुमने यार। लेकिन फिलहाल कमाल तो हम भी करेंगे। शाम के 5:05 हो गए।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और देवी और सज्जनों जब आपके साथ है, शाम के 5:05 हैं तो खेलते हैं जनाब
2: पहचान कॉल।
0: और आज की आवाज़ आपको पहचानने की किसकी है?
3: नमस्ते दर्शकों, नमस्ते वकील साहब, नमस्ते नॉट माय वकील साहब, नमस्ते जज साहिबा, नमस्ते डंडे वाले मैन।
0: अरे बाप रे, इतना सारा नमस्ते, बड़ा ही संस्कारी हीरोइन की आवाज लग रही है, फिर से सुनो जरा।
3: नमस्ते दर्शकों, नमस्ते वकील साहब, नमस्ते नॉट माय वकील साहब, नमस्ते जज साहिबा, नमस्ते डंडे वाले मैन,
0: नमस्ते डंडे वाले मैन। 5000189650000189 5000189650 जितनी जल्दी हो सके मैसेज करके अपने वॉइस नोट में भेजिएगा, हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूँ और जिसका आपने आवाज सुना है वो फला एक्ट्रेस है। आने शुरू हो गए जवाब, 5000189650 पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्यार अगर एक बार हो जाए, दिल टूट जाए तो इंसान फिर जख्मी हो जाता है और फिर दो तीन जगह और करता है, उसी को सिद्ध करता है ये गाना मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
1: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ। अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन?
2: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
3: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
2: यस सर,
3: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
2: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
3: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
2: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
3: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
2: राइट सर?
3: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
2: सर
3: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
2: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
3: मैं
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
0: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
3: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
0: यस सर।
3: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
0: सर कौन?
3: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
0: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
3: यार,
0: भी
3: क्या
0: मैं...
3: नहीं होता यार?
0: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से। हम तो ये
3: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हैं।
0: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
3: झूठ बोलेगा तुम लोग,
0: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
2: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है अब।
3: यार तुम लोग ना
2: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: महंगा ले दे लहंगा है भाई, बजट का शॉर्टेज है मैडम, इतनी लंबी जिद मत करो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन सही जवाबों की बिल्कुल कमी नहीं होती जब मैं आपके साथ खेलता हूँ पहचान कौन में। आज जो वॉइस सुनाई वो कुछ यूं है।
2: नमस्ते दर्शकों, नमस्ते वकील साहब, नमस्ते नॉट माय वकील साहब, नमस्ते जज साहिबा, नमस्ते डंडे वाले मैन।
0: तो भाई ऐसे में मैंने यही पूछा कि बताइए आवाज किसकी, और देखिए जवाबों की लिस्ट आई है।
3: हाय गौरव भाई, कैसे हो? और ये जो आवाज आपने सुनाई अभी वो सारा अली खान की है। थैंक यू।
4: हे आरजे मस्तमौला गौरव, गुड इवनिंग। आपने जो ये आवाज अभी सुनाई है ये सारा अली खान की है। ओके थैंक यू।
5: ये सारा अली खान की आवाज लग रही है, सैफ अली खान की बेटी।
6: सारा अली खान।
0: ओके अली भाई, इन्होंने नाम बताया अली, लेकिन जल्दी से मैसेज भेजा उसके लिए। पहले तो ये टॉप फोर को जोरदार तालियां हो जाए। इसके अलावा थैंक यू टू रोहित, असलम भाई एंड यूनिस भाई। इसके अलावा एक और नाम जिन्होंने सही जवाब दिया लेकिन लिख के भेजे हैं, यस ये नाम है रवि भाई का। इसके अलावा सैफ जिन्होंने सही बताया है, एंड अगर बात करूं तो ये एक राजू भाई जिन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलत लिखा है, उन्होंने कहा है जूही चावला, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, या तो आप जूही के फैन है। इसके अलावा राजू भाई को थैंक यू, एंड साथ ही साथ मुफीद आपको भी दिल से शुक्रिया, सही जवाब। इतने सारे लोग सही जवाब भी दे रहे हैं लेकिन एक दो लोग कंफ्यूजन में बोल गए सारा अली खान के अलावा कोई नाम। पहले तो सही जवाब है सारा अली खान, सैफ अली खान एंड भाई कह सकते हैं ये उनकी बिटिया, इतनी टैलेंटेड हैं। एंड ये एक बार हमारे शहर बनारस आई थी, इतना जबरदस्त व्लॉगिंग भी करती हैं, कमाल की व्लॉगिंग की थी। फिलहाल के लिए आज का सही जवाब यही है, मस्त बोलो बोलो आगे बढ़ता है मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मदर टंग। मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
2: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
3: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
4: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
5: एक मंच जो दर्शाएगा 2500 साल पुरानी और अनोखी कला, जहां गूंजेगा इतिहास, थिरकेंगे कदम, जहां सुर, ताल और कथक बनेंगे एक ऐतिहासिक संगम। एमके आर्ट्स एकेडमी प्रेजेंट्स विरासत 3, स्पॉन्सर्ड बाय एप्पलबीज। फ्राइडे 15th मई डीपीएस मोनार्क स्कूल, 5 PM ऑनवर्ड्स, एंट्री फ्री। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100813।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
5: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आए हम भी क्या समझाएं, हालात कैसे कैसे हो जाएं। आज है मदर्स डे, वो दिन जब मैं अपनी मम्मी को बस इतना ही कहता हूँ कि यार माँ आपने जो भी किया हमारी जिंदगी में उसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। मतलब यार हमारी जिंदगी का पहला शब्द ही माँ होता है, और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तब तक मम्मी मम्मी चलता है। फिर बात अलग है कि उस मम्मी की जगह रिप्लेस होके बीवी आ जाती है, पर जब तक माँ जिंदगी में रहती है एक चीज डन रहती है कि आपको भले ही वो लाख पीट लें, आपकी लाख तोड़ाई हो जाए, आपको लाख वो प्यार कर लें, लेकिन आपके पापा आपको कुछ नहीं कह सकते। एंड अगर आप यही वाला प्यार पाए हैं तो आप बड़े लकी हैं। फिलहाल इन सब के बीच इतना ही कहना चाहता हूँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी लवली मॉमीज, क्योंकि आपकी वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनी हुई है। वरना हम लोग तो पापा से मार खा खा के बस जिंदगी निकाल रहे थे। अगर आप लोग ना होती तो कौन बचाने आता खराब नंबर आने पे? अगर आप लोग ना होते तो पापा के उन बॉल्टों से हमें कौन बचाता जो हम क्रिकेट मैच में लड़ाई करने के बाद घर आने के बाद खाते थे? आपकी ही वजह से हम रेसलिंग देख पाए, आपकी वजह से ही हम ना जाने कितनी बार पापा से पिटते हुए बचे, और मम्मी आपकी ही वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। बोलने की कला माँ से ही मिली है, क्योंकि मेरे पापा को बहुत अच्छे से बोल बोल के सुनाती थी मम्मी, एक एक बात पे ना ऐसा टॉन्ट, वही कला मेरे अंदर आ गई। तो मैं बातों ही बातों में कभी कभी आपको भी बता देता हूँ। फिलहाल हैप्पी मदर्स डे, और अगर मैं अभी तक मम्मी को फोन नहीं किया तो एक बार फोन घुमा लो और बोल दो मम्मी हैप्पी मदर्स डे, वो भी बोलेंगे चल पागल पता नहीं कहाँ से देख रहा है। लेकिन आजकल ना मम्मीज को भी अच्छा लगता है जब उनके लिए स्पेशल दिन हो और आप उन्हें विश कर रहे हो। 89.6 मिर्ची 1, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मॉम्स, मिर्ची इट्स ऑन।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood Bollywood Bold Eye
1: Only on Mirchi It's Hot
2: शाहरुख खान आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: हॉलीवुड बोल्ड आल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: एक मंच जो दर्शाएगा 2500 साल पुरानी और अनोखी कला, जहां गूंजेगा इतिहास, थिरकेंगे कदम, जहां सुर ताल और कथक बनेंगे एक ऐतिहासिक संगम। एमके आर्ट्स एकेडमी प्रेजेंट्स विरासत 3, स्पॉन्सर्ड बाय एप्पलबीज। फ्राइडे 15th मई डीपीएस मोनार्क स्कूल, 5 PM ऑनवर्ड्स, एंट्री फ्री।
5: मिर्ची मदर टंग।
6: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है,
7: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
6: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
8: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
6: मिर्ची कहता है, हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मदर्स डे
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिश्किया ये गोली मार दी और आ गया आपके साथ
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन फिलहाल देवी और सजनों, हम उस बात की तरफ बढ़ेंगे जिसकी हमें हमेशा बहुत जरूरत होती है। अरे रियाल की बात कर रहे हैं, उसका क्या रेट मिल रहा है बता रहे हैं। आईपे ऐप डाउनलोड करने से आपकी जिंदगी बहुत सारी सहूलियतें आ जाती है, जैसे कि आप आराम से कहीं का भी बिल, गवर्नमेंट बिल्स भी दे सकते हो। एक बार आपने अपनी लॉगिन सब सेव कर दी, सब कुछ टनाटन हो जाता है, वोडाफोन माई बुक मिल जाता है और अच्छे रेट्स तो मिल ही रहे। जैसे इस वक्त एक कचरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 25.88 25.88 रुपए भारतीय मुद्रा में, वही एक कचरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 87.34। जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात करूं तो वाहिद कचरी रियाल के बदले 77.20 पाकिस्तान रुपीज। वही नेपाली रुपीज की बात करें जरूर तपाई को रेट मिलोगा था, एक कचरी रियाल के बदले 41.42 का वॉल्चर रेट दाई। हाँ जी 41.42 का रेट जो हजूर, अगर आप एक कचरी रियाल के बदले बहनी घर भेजेंगे तो 41.42 का वॉल्चर रेट। और वही बांधु बांग्लादेशी टका दादा एक्टा कचरी रियाल के बदले 33.66 बांग्लादेशी टका का रेट। ये था मेरे साथ आईपे करेंसी एक्सचेंज रेट मिर्ची।

0: Tiruchi Helpline.
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है. थक जाता हूँ. क्या करूँ?
1: Oh man, ये तो बहुत टायरिंग है. तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब.
2: मस्त जोक मारा रे. ये हंस रहे हल्का हंस.

0: दुनिया में कितना भी बड़ा किसी बात का जब फितूर चढ़ा हो, मम्मी के एक थप्पड़ से सब उतर जाता था। जो हमें कोई ना समझा पाया वो सिर्फ मम्मी के ही थप्पड़ों से समझ आता था। शाम के 6:03 से ज्यादा।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और फिर मम्मी का बस ये लाइन पूछना कि वो भी तुमको पसंद करती है क्या? बस आपको ऐसा लगता था कि आप मम्मी को मना ही लेंगे और फिर पापा तो मान ही जाएंगे। ऐसा स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक चला ना, लेकिन आखिरी में मम्मी ने सारा भांडा फोड़ ही दिया। बिल्कुल मिलाकर यार बहुत सारी यादें हैं मम्मी के साथ, एंड आई एम श्योर आपकी भी जिंदगी के ऐसे कई सारे पल हैं जो आपने आंखों में कैद कर रखे हैं। एंड मैं अपनी मम्मी की बात करूं, इस बार तबीयत खराब थी, मैं इंडिया गया था, पर अब मम्मी बेटर है पहले से। आप सबकी दुआएं रंग लाए यही मैं कहूंगा। इन सब के बीच एक सिंपल सा सवाल, जब मम्मियों की बात हो गई है तो बॉलीवुड से भाई कह सकते हैं माँ बेटे की ये जोड़ी बड़ी फेमस है। सलमान खान की मम्मी सबसे ज्यादा यही बनी है और जिस फिल्म में बनी है वो फिल्म सुपर डुपर हिट ही हुई है। बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस है जो सलमान खान की माँ का किरदार निभाती थी और पिक्चर को सुपर डुपर हिट बना देती थी। 5000196 पर वॉइस नोट में आपके जवाबों की झड़िया चाहिए। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से याद है वो नाम। 5000196, सलमान खान की ऑन स्क्रीन मम्मी जिन्होंने जिस फिल्म में सलमान की मॉम का किरदार निभाया वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 5000196। मैं तो जवाब बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल हम आपके बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
1: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
2: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
1: मैंने बीए किया है।
2: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
1: पर क्यों?
2: नहीं, मैं ऐसी है पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है बताइए?
2: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती मैं।
1: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
2: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
1: हाँ, ज्यादातर नहीं।
2: हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए? तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते
1: हैं। मेरी बात सुनिए,
2: दोबारा एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो
2: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या है?
1: नहीं,
2: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
1: नहीं बकवास।
2: अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत करिएगा, मेरी बात सुनिए। रेखा
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
6: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर।
5: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
6: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
5: किलर ऑफर्स, मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
6: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
7: मिर्ची मदर टंग, मिर्ची मदर टंग।
8: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, तो विदेशी माँ कहती है
9: ओके, टेक केयर डियर,
8: और वहीं मदर इंडिया कहती है
10: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
8: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल, माजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुफर करे दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये गाना कानों में कुफर कर रहा है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन काम की बात मुद्दे पर लाते हैं, जहां पर कतर से अब एक्स्ट्रा प्लेन आते और जाते हैं।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: वैसे हम आपको बता दें, संडे में 10 आज से कुछ और नई अपडेट आई है। समर सीजन में फ्लाइट ऑपरेशन हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। पिछले दिनों के जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन से उससे बाहर आकर अब कतर एयरवेज अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 26 एयरलाइन पार्टनर्स ऑपरेट कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम दोहा। यस, एंड बड़ी बात यह है कि फ्लाइट ऑपरेशंस अभी भी अपने पीक समर में जाकर एक्सपेंड ही करेगा। जहां मैं आपको बता दूं, अप्रैल के महीने में फ्लाइट दुबई एयर, अरेबिया, ओमान एयर, रॉयल जॉर्डन, यूएस बांग्ला एयरलाइंस, विमान बांग्लादेश, बद्र एयरलाइंस, सीरियन, इजिप्ट थे। वहीं मई के महीने में एयर इंडिया एक्सप्रेस, गल्फ एयर, इंडिगो, इथियोपियन एयरलाइंस, सऊदिया, कुवैत एयरवेज, एंड कल से यानी कि 11 मई से श्रीलंकन एयरलाइंस, 12 मई से पेगासस एयरलाइंस, 17th ऑफ मई काम एयर, मई 19th फ्लाइनास, एंड जुलाई 1st रॉयल एयर मरोक, एंड जुलाई 2nd मलेशियन एयरलाइंस। यानी कि लगातार फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो रहा है और ये बता रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। और जिनकी भी पिछले दिनों कैंसिल हुई थी उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है, उनकी डेट्स उनको दी जा रही हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, फ्लाइट ऑपरेशंस गेटिंग बैक टू नॉर्मल, एंड द बेस्ट इज हमारा ही फायदा होगा भाई। अब तो कॉम्पिटिशन में हमें भी सस्ती टिकट्स मिलेंगी, आराम से घर जाएंगे, बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, एक महीने की और बात है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: माइंड में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मिर्ची मदर टंग, मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ कामली कहती है
3: कमिंग डियर,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
4: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी, नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल, माजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपको ना अचानक से कतर में बहुत फिट एंड फाइन लोग दिखने वाले हैं, क्योंकि 1000 से भी ज्यादा एथलीट्स हमारे कतर आ रहे हैं। बात कर रहा हूँ 4th GCC गेम्स की, जिसकी तैयारियां आप जोर शोर पर है। मंडे अलशकाब अरीना में, यानी कि कल से शुरुआत होने जा रही है रीजन के सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, जिसको 4th GCC गेम्स दोहा 2026 कहा जा रहा है। यस, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सारे देशों के ओलंपिक कमिटी से लोग जो छाटे गए बेस्ट प्लेयर्स वो यहां आएंगे और वो वन गल्फ वन हार्ट के टाइटल के साथ मैदान में उतरेंगे यूनिटी सॉलिडारिटी एंड जीसीसी नेशंस के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए। एंड आई एम श्योर ये एक शानदार मौका है जब जीसीसी के सारे बेस्ट स्पोर्टिंग टैलेंट एक जगह पर होंगे, वो है कतर। 17 डिफरेंट स्पोर्ट्स, जिसमें हैंडबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, पैडल, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, बिलियर्ड, स्नूकर, बास्केटबॉल का 3x3 वर्जन, शूटिंग, आर्चरी, वॉलीबॉल, इक्वेस्ट्रियन एंड बोलिंग, इतने सारे डिफरेंट गेम्स। एंड आई एम श्योर ये एक मौका उन सभी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए जो कतर में किसी न किसी खेल से जुड़े हैं, वो भी जरूर पहुंचे। एस्पायर डोम में इसकी शुरुआत होने जा रही है, याद रखिए। इसके अलावा कतर बिलियर्ड, स्नूकर फेडरेशन हॉल और कतर बोलिंग सेंटर में भी मुकाबले होंगे, लुसेल के शूटिंग रेंज में भी होंगे। ये सब कुछ हमारे कतर में अगले 11 दिनों की रौनक लेकर आ रहा है। तैयार रहिए, देखते हैं इस टेबल को कौन टॉप करता है। हाँ जी, वैसे अगर बात करें तो अब तक कुवैत ने ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग में अब तक हर बार माहौली बनाया हुआ है। यस, इन 2011 48 मेडल्स जीतकर इतिहास रचा था। क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा और कोई और देश आगे बढ़ेगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। हम घर में ना बहुत ही ज्यादा डबल शेयर होते हैं, तो क्या पता इस बार कतर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तो कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, ऑल द बेस्ट। एंड कल हमने इसके मैस्कॉट को भी देखा जो वहां बकायदा था। एंड आई एम श्योर ये एक शानदार मौका है जब हम अपने जीसीसी गेम्स को इतना बड़ा बना दें कि लोग कहें यार गल्फ में अगर जीसीसी गेम्स हो रहा है तो वो कतर के ही पास होना चाहिए। चलिए जी, इसी उम्मीद में कि जितना प्यार हमने फुटबॉल को दिया है उतना ही प्यार अब इस जीसीसी गेम्स को मिलने वाला है। मस्त मौला गौरव ऑल दी बेस्ट कहता है और वशेक को भी थैंक यू कहता है जो लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। मैस्कॉट, यस वशेक, 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: भट पूतरे
1: भट
0: भट अरे भट हूँ
1: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
0: खट खट हूँ दैट
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot. It's hot. It's hot.

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
1: अरे कोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: हाय हाय, क्या गाना बंजारे ने गाया और सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: जब हम आपके साथ हैं तो और भी बातें बताएंगे, लेकिन पहले घड़ी का टाइम बताएं, 7:03 से ज्यादा।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Well, एक अच्छी खबर UAE से आ रही है। The Ministry of Education, United Arab Emirates ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो रिज्यूम कर रहे हैं in-person learning for all students, teaching and administrative staff in public and private schools. Yes, और ये शुरू हो रहा है कल से। वहाँ पर 11 मई से अब बच्चे बकायदा स्कूल जाएंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे, और कहा यही गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करने को कह दिया गया है। कतर में ये ऑलरेडी हो रहा है काफी दिनों से, और इन सब के बीच कतर में बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेशंस कल से एक्सपेंड होने जा रही है, एंड ये बता रहा है कि पिछले दिनों GCC के जो हालात से उनसे उलट अब चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। इस उम्मीद से कि पूरी दुनिया में अमन चैन शांति का पैगाम लेकर आज मदर्स डे पर हम सबकी यही दुआ रहेगी कि सारी खुश रहे और किसी माँ को ये टेंशन ना हो कि उसका बेटा गल्फ में है तो कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है। यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से, और मुझे पता है हमारी दुआओं में इतना असर है कि ऊपर वाला उस पर जरूर अमल करेगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स ऑल।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
0: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्या आप वो हैं जो कभी घर में अकेले खाली नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई काम चाहिए?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और आपने फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे जब से वॉलंटियरिंग करी आपकी आदत बन गई, तो अब आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कतर ने नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म के रूप में। #9749 हम आपको बता दें कतर ने आज इसकी अनाउंसमेंट की है खुद प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिम अल थानी, जिन्होंने कहा है कि हम नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। ये नया इनिशिएटिव किस बात के लिए है? ये बेसिकली डेवलप करेगा, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करेगा पूरे वर्क सिस्टम के थ्रू एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में, जो कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी से आगे बढ़ेगा। वेल, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है, और मैं कह सकता हूं वो लोग जो दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनकर अपने कतर को सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इससे आप किसी को सर्व भी करोगे और कतर को और मजबूत भी बनाओगे। तो बस अब इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर है सोसाइटी को सर्व करने का जज्बा, तो अब आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है। एंड आई एम श्योर ये नेशनल वॉलंटियर प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम के कुछ बेहतरीन वॉलंटियर्स तैयार करेगा, कुछ बड़े इवेंट्स के एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचेंगे। एंड इन सब की शुरुआत के लिए आपको जाना कहां है? अरे भाई, उसी नए प्लेटफॉर्म पे volunteer.gov.qa। Yes, I repeat, volunteer.gov.qa, जो कि citizen residents को मौका दे रहा है। अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज जितनी भी कतर में आती है अक्रॉस कंट्री, ये एक्टिविटीज में आपको जाने का मौका मिलेगा, और इसके लिए बकायदा आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगा जितने घंटे आपने वॉलंटियरिंग की होगी उसके लिए। शानदार प्रोग्राम, और उन लोगों के लिए एक शानदार मौका जो अभी तक वॉलंटियर नहीं बन पाए लेकिन अंदर जोश और जज्बा बनाए रखें, आपके लिए यही प्लेटफॉर्म है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा मैं 2 डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट।

क्या कतर एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की हैट्रिक लगाएगा? मस्त मौला गौरव आपके साथ है। एंड बता दूं, सऊदी अरेबिया में कल सलवा पैलेस रियाद में वो टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट हो गई है जो 7th ऑफ जनवरी 2027 से शुरू होगा एंड उसका फाइनल खेला जाएगा 5th ऑफ फरवरी 2027 एट किंग फहद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम। यस, 19th एडिशन का चैंपियन कौन होगा इसका इंतजार कीजिए, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कतर को एक ग्रुप मिल गया है एंड कतर के ग्रुप में हमारे अलावा जापान जो कि कई बार चैंपियन रह चुका है, उसके साथ साथ थाईलैंड एंड इंडोनेशिया की टीम है। वहीं अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें उनके साथ कुवैत, ओमान एंड पलस्तीन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तजिकिस्तान, इराक, सिंगापुर ये ग्रुप डी का हिस्सा है। उज्बेकिस्तान, बहरीन, DPR, कोरिया एंड जॉर्डन ग्रुप बी में। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं और इतने कहूंगा वन ऑफ दी बेस्ट मौका है जब कतर तीसरी बार इस ट्रॉफी को उठा सकता है, 19th एडिशन का चैंपियन बन सकता है और व्हाट बेटर प्लेस देन सऊदी अरेबिया जहां पर हम फुटबॉल के चैंपियन एक बार फिर से बन जाएं एंड कमाल दिखा दें। कतर अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा होगा और मौका है कि हम यहां पर जीत कर ये बता दें कि एशिया में तो अभी फुटबॉल में हमारा कतर ही छाया रहेगा। तो सऊदी अरेबिया 2027 AFC एशियन कप की तैयारियां कर लीजिए, हम अभी से पैसे बचाने शुरू करेंगे ताकि सऊदी में जाके मैच देख के अपने अल्लाह ना भी बोले तो कतर को सपोर्ट करें। 89.6 मिर्ची 1 यल्ला हबीबी गोल इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings. बचपन में आप कौन सी games खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग game खेलते थे.
4: Video games. नहीं अभी time नहीं मिलता है और दूसरी बात अभी इतना advanced सब कुछ आ गया है. हम लोग 8-10 घंटा पहले computer games पे लगे रहते थे.
3: अभी computer games के लिए जो computer चाहिए उससे कम configuration वाला हमारे music के लिए काफी होता है.
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुपती है. आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Mirchi Mother Tongue.
6: Mirchi Mother Tongue.
7: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है
8: Watch it son, next time be careful.
7: और वहीं Mother India कहती है
9: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो.
7: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल.
10: माजिकल.
7: Wish you a very happy Mother's Day.
10: Mother's Day.
5: Mirchi, it's hot.

मुस्कुराने की तो वजह माँ होती है। बस एक बार उसकी बात का असर समझ कर तो देखो। अक्सर ये होता है कि हम मम्मी पे झल्ला आ जाते हैं, अरे मम्मी हो जाएगा यार, काहे इतना परेशान हो रही है। लेकिन सच ये है कि एक माँ की फिक्र दुनिया में सबसे बड़ी फिक्र होती है कि उसका बेटा क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या किसके साथ बैठ रहा है। और ये स्पेशली तब ज़्यादा हो जाता है जब हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं और हमें लगता है यार माँ बाप को हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विश्वास कीजिए, हमारी ज़िंदगी थोड़ी अलग थी। हम तो उसी शहर में पले बढ़े और मम्मी की इतनी मार खाई कि आज मेरा पूरा का पूरा कद काठी मजबूत है। वेल, बाहर का खाना छोड़कर मम्मी हमेशा कहती थी घर का खा एकदम ठीक रहेगा, फिट एंड फाइन रहेगा। और खुद को किसी बड़े 5-स्टार होटल के सेफ से कम नहीं समझती है। कहती देखो हमारे खाने के आगे इनके होटलों का खाना एकदम बेकार है, किसी भी होटल में हम चले जाएं मम्मी की एंड लाइन यही होती थी, इससे अच्छा तो हम ही बना देते। वैसे सच बोले तो इस चक्कर में कई बार मम्मी की स्पेशल 5 वाले हाथों वाली डिलीवरी भी मुंह पर बहुत मिली है। एंड सच कहूं तो हम तीन भाई तो और हम तीनों इतने शैतान थे कि मम्मी ने हमें कैसे पाला होगा, हम ये सोचते हैं। हमारे और आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आते हैं ना जब हमें ये लगता है कि यार मम्मी क्यों ही इस चक्कर में पड़ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि माँ जो उस वक्त समझा रही होती थी हमें नहीं समझाता था, लेकिन आज जिंदगी में वही सारी बातें सही मोड़ पर हमें लाकर खड़ा कर गई। तो मम्मी आपने हमें चाहे जितना भी मारा, आपकी उसी मार ने हमारी जिंदगी को सुधारा और आज जो भी हैं हम उसमें आप ही का सब कुछ दिया हुआ है। इसी उम्मीद से कि मम्मी के आशीर्वाद से हम दुनिया में और तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा। अपनी मम्मी को प्यार से कह दिएगा हैप्पी मदर्स डे। हालांकि बस इतना ही कहूंगा, लेट नहीं हुई है, फोन कर लो अभी भी। 89.6 मिर्ची 1 मस्त मौला गौरव सिंह, मस्त सलाम हबीबी मिर्ची थॉट।

0: मिर्ची मदर टंग, मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है
0: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है
2: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
1: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकन। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
6: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं, दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi murga.
4: हेलो
5: हेलो मनोज जी।
4: हाँ जी
5: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
4: जीती।
5: हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
4: 40,000 रुपए?
5: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
4: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
5: नहीं, तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
4: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
5: नहीं सर,
4: वर्कशॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
5: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
4: जी,
5: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
4: हाँ?
5: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
4: अच्छा,
5: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसका 40,000 दे रहा है।
4: पागल हो गया है तू क्या?
5: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000 सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
4: हैं? ट्रेन की पटरी
5: मैं आपसे
4: छोटी जाएंगे।
5: सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा नहीं
4: सर।
5: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
4: सर सर सर
6: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो में चीज़ नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका
4: सर,
6: आप बस मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: ये पजा
8: हाउस ऑफ जोश।
9: हाय सर,
8: हाउस ऑफ जोश।
9: हाय सर।
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
11: बैक टू बैक
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: 89.6 FM Mirchi 1
15: Mirchi 1
16: It's hot.
0: Ghana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi
17: Number 6.

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलॉन्ग विद कुटले खां एंड रैविटोर. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक. लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम. कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है. लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है. अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में. वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची. वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था.
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं.
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे. एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर. इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग. इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है. जहां इट डजेंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा. ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है. दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: दूं।
1: What a song! तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं, राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई। Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation, गाने का नाम है शीशा, मिट्टा रॉर की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 5.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mother Tongue.
2: Mirchi Mother Tongue.
3: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
4: ओके टेक केयर डियर।
3: और वहीं मदर इंडिया कहती है
5: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए, जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
3: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल।
6: मैजिकल
3: विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
6: मदर्स डे
1: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन।
12: इट्स हॉट।
0: Indie Top 10
13: Kanika ke saath on Mirchi
14: Number 4

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions super jump karkar, Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्ड्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: स्टाइल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। Before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी, एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own, इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनूं और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mother Tongue. Mirchi Mother Tongue.
2: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ कामली कहती है
3: कमिंग डियर,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
4: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो जरा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची मदर टंग। मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चा माँ से कुछ खाने को पूछता है तो विदेशों में माँ कहती है
3: ड्रिंक दिस बनाना शेक इट्स हेल्थी,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
4: बनाना शेक बनाया है, केले खराब हो रहे थे पी लो।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची मदर टंग। मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चे से घर का कुछ सामान टूट जाए तो विदेशी माँ कहती है
1: वॉच इट सन, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
3: तोड़ डालो सब, घर में आग लगा दो, रोज रोज की टेंशन ही खत्म हो।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। मैजिकल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ओवर साइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल। लेकिन आपको पता है कि ओवर साइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे ही हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जाकर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उन पर बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची मदर टंग, मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
3: ओके टेक केयर डियर,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
4: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है मैजिकल। मैजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट,
7: हू देयर?
6: अगर कर,
7: अगर कर हू,
6: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
7: खट खट, हू देयर?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बनके ठनके आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: मिर्ची मदर टंग।
1: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ कामली कहती है,
2: कमिंग डियर।
1: और वहीं मदर इंडिया कहती है,
3: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी, नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
1: मिर्ची कहता है, हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसे ही वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट ज़ीनत अमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची मदर टंग, मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चा बोले मैं बाहर जा रहा हूँ तो विदेशी माँ कहती है
3: ओके टेक केयर डियर,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
4: अरे बिल्कुल जाइए महाराज, ये घर थोड़ी है धर्मशाला है, आपका जब मन करे आइए जब मन करे जाइए, जाने के लिए आपके लिए रथ मंगा दे।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकल। माजिकल विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वॉज टेलिंग मी कि डिम्पल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची मदर टंग। मिर्ची मदर टंग।
2: जब बच्चा माँ को बार बार बुलाए तो विदेशी माँ कामली कहती है
1: कमिंग डियर,
2: और वहीं मदर इंडिया कहती है
3: क्या है दिन भर मम्मी ये मम्मी वो मम्मी मम्मी नौकरानी बना के रख दिया है मम्मी को।
2: मिर्ची कहता है हर मदर टंग होती है माजिकन। माजिकन विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
5: किया।
4: कभी किसी को

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना। आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, सो कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दे-

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफरन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। सो आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सकें।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
0: मिर्ची, it's hot.

पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे अच्छा एक बात बताओ आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते बता नहीं पाते हो जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है वो जैसे ही गायब होता है तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बनना है हमारे लिए लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स मैं हूं श्रेया गुड नाइट

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: Because that's the game. आपको दो लोगों को तो बचाने ही पड़ेंगे.
3: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट,
5: हू देयर?
4: बनता
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
5: खट खट, हू देयर?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे। अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, it's hot.